नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए

यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार।

जी आकाशवाणी तनगर तनगा दम रोगाम्ब तेल पोलोग अलो लोरु कोना ना नग जीत आरो जगो गालो मिंके नाग मा मिंजी दु मिंके नाग मा मिलेन जी नंगो जुम तो लंबु इंडिया लोक फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सैटेलाइट विक्रम वन एम मरो मिशन आगमन आरालो आलरूब तलेग 450 किलोमीटर ऑर्बिट तलो दलिक मतु रॉकेट एम मरो 12:05 PM लो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश लोक देरब मतु इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी अबालो प्राइवेट रॉकेट तालेलो दे चामोने वर्ल्ड लोक कंट्री आउम नाने गोबर लेंतु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैदराबाद के प्राइवेट स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी एम आईएगम एम जिलिक दूला हार ने होमेलो विक्रम वन टीम एम कारक जिनाम लगावे तोमलतु ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मचिन विक्रम वन टीम एम आईएगम एम जिलिक तु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मरो वेस्ट बेंगल सिलीगुड़ी के जमागुज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैंप लो हालिक दूला बीएसएफ आर्मी का दंग कारक जीतू ओके प्रहरी सम्मेलन लो हालिक दूला जीन एम चिन लीलिक तु लोदुम आलो लो बॉर्डर मोको ग अर एम पुर्द मोनाम लगाब मोको ग नि जीनम गेनम आबा एम रजिस्ट्रेशन मोनाम ओक लो एंड ऑर्डर आबा एम हिका दर का मोनाम लगाब आगम एम जाबलक तु मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स ओक आई टी ए आधार एप एम 4 करोड़ एम एक बेन याने गोब डाउनलोड एम ऋतु अला मेन्दुला आधार सर्विस सर्विस एम गुमिन एम मतिन मोदूला डिजिटल पास आइडेंटिटी सर्विस गोब रिलेंदु अला मेन्तु ओके आधार एप एम मोलेंदाक लोके इज्जा गोब 11 लेस गोब एड्रेस अपडेट ओके 49 लेस गोब मोबाइल नंबर अपडेट एम ऋतु अला मेंकें जितु एमएलए नीनोंग एरिंग लुगो आलो ओगो देपी मोलु दोलु लो जिपु जिलिन ओके देदिर रचेक रिमा दोब अला देपी जिबु अबु एम बिगिये मुदु कुबे रिनाम डाइवर्जन काम रिनाम एंग कागो तु देपी मोलु दोलु लो जिबु कोदे एम मजाब लालेला इनले कुलेला दोलू ग तिंग एम कादूला एमएलए मु आयन मुर्को एम जिलेन तु ओके दोलू लो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट स्कीम लाले जिनाम लगाब दिंची दुना अला मेन्दूला दोलू ग गाम बुरा ओके पंचायत मेंबर एम दिंची व कारा तरा दूला काम एम रिलेन मोनाम लगाब एमएलए मु मेन्तु लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट लो अपातानी बाप्टिस्ट एसोसिएशन का दे ज्ञाति तका जोनल जनरल हॉस्पिटल एम मिलाई दूला ब्लड डोनेशन कैंप एम रिगा दूला 36 यूनिट गोबे ई एम लाकुम जितु लोदुम आलोलो 10 यूनिट ए पॉजिटिव 10 यूनिट बी पॉजिटिव 14 यूनिट ओ पॉजिटिव ओके ए बी पॉजिटिव एम यूनिट आजी गोबे लाकुम दूला मेडिकल लो लोमनाम जिनाम ग्रिदाक लो ई एम पिमारिसो कामा दोबे लाकुम जितु पिप माउंटेन डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अमित नोतियाल मरो तवांग स्कूल ओके एनजीओ का दम कंप्यूटर ओके एचओ रॉक एम मेजर बोब का

0: tadu. India Meteorological Department Arunachal ge Papumpare ok Lohi district am red alert go katem dula har na homelo nido kode dobum dorak achiru berde du elementu okeda west coming east coming kurungkume pake kesang isyang tirap ok changlang district am orange alert go katem tu ok kabutuel district go nam yellow alert go katem tu ke tanagade jirogang gunuga galo mingken agoma ege
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। गालो श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों वक्त है आपको ले जाने का हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम सुबह सवेरे शुरू होता है इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
3: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
4: Superior handling.
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारी और ताजगी भरी सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट आरजे लूसी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदत के बारे में जो ना सिर्फ पढ़ाई में मदद करती है बल्कि पूरे दिन को बेहतर बना देता है। हमारा आज का विषय है रात भर जाग के पढ़ाई करना बेटर है या सुबह जल्दी उठकर। दोस्तों हम सबने कभी ना कभी एग्जाम के समय रात भर जागकर पढ़ाई की होगी, लेकिन सवाल ये है क्या सच में सबसे अच्छा तरीका है या फिर सुबह की शांत हवा और ताजा दिमाग के साथ पढ़ाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सुबह के शांत माहौल की। सुबह के समय आसपास का वातावरण बहुत ही शांत होता है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस कम होते हैं, टीवी बंद होता है और बाहर का शोर भी बहुत कम होता है, इससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं दिमाग की ताजगी की। रात को अच्छी नींद लेने के बाद हमारा दिमाग फ्रेश होता है। जब दिमाग आराम कर लेता है तभी नई बातें याद रखना और मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन भी यही बताते हैं कि अच्छी नींद के बाद दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है, इसीलिए जो चीजें सुबह पढ़ी जाती हैं उन्हें याद रखना कई लोगों के लिए आसान होता है। दोस्तों आइए इसी के साथ लेते हैं हमारा पहला म्यूजिकल ब्रेक जहां आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में। गीत का नाम है सुनो कहा और सुना।

श्रोताओ, सुनते हैं अगला गीत जो है, तुम्हें देखा तो ऐसा लगता है। आप सुनेंगे इसे आशा भोसले की आवाज में।

तो दोस्तों, इस बेहतरीन नगमे के बाद आइए जारी रखते हैं हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात कर रहे थे कि रात भर जाग के पढ़ाई करना बेटर है या जल्दी उठकर। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप रात के 2 या 3 बजे तक जाग

देखते रहेंगे तो अगला दिन क्या होगा? नींद पूरी नहीं होगी, आंखों में थकान होगी, क्लास जाने में या ऑफिस में नींद आएगी और ध्यान भी कम लगेगा। इसका असर सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि सेहत पर भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के लिए एक ही रूटीन सही होता है। कुछ लोग नेचुरली रात में ज्यादा अच्छा फोकस कर पाते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं और सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है तो देर रात तक जागना अक्सर नींद की कमी का कारण बन सकता है। अगर आप जल्दी उठकर पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं तो एकदम से अपना रूटीन मत बदलिए। रोज 15 या 20 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। रात को भी थोड़ा जल्दी सोइए। धीरे धीरे आपका शरीर का क्लॉक इस आदत को अपना बना लेगा। सुबह उठते ही दोस्तों आपको एक ग्लास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए या 5 मिनट गहरी सांस लीजिए। इसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पहले से बेटर हो रहा है। और एक जरूरी बात, सिर्फ लंबे समय तक पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलती। जरूरी है स्मार्ट स्टडी। छोटे छोटे स्टडी सेशंस रखिए, बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और जो पढ़ना है उसका रिविजन जरूर कीजिए। पेरेंट्स के लिए भी एक छोटा सा संदेश है, बच्चों पर रात भर जाग के पढ़ने का दबाव ना बनाएं। उन्हें अच्छी नींद लेने, पौष्टिक भोजन खाने और नियमित रूटीन बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एक सेहतमंद शरीर और शांत मन ही अच्छी पढ़ाई की बुनियाद है। दोस्तों याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। अगर हम दिन की शुरुआत उत्साह, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ करें तो सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज का सुबह सवेरे यही समाप्त होता है। मैं हूँ आपके रेडियो साथी। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुबह एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों लेकिन इसी के साथ हमारा म्यूजिकल कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपातानी भाषा में समाचार। आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आइए इसी के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग इंफरटेनमेंट का पहला गाना सुनते हैं।
1: मारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी। चलिए आज जानते हैं आज के दिन भारत और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। दोस्तों, 19 जुलाई भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में से एक के लिए जाना जाता है। 19 जुलाई 1969 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया था। इस फैसले का उद्देश्य ये था बैंकिंग की सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना, छोटे किसानों, व्यापारियों और गरीब वर्ग को आसानी से ऋण उपलब्ध करना। इस निर्णय के बाद भारत में बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा मिला और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आज हम डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो उसकी बुनियाद में बैंकिंग के इसी विकास की एक लंबी यात्रा छुपी हुई थी। दोस्तों, इसी के दिन 19 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रुशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इस युद्ध ने यूरोप के राजनीतिक नक्शा बदल दिया। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और यूरोप में शक्ति संतुलन बदल गया। इतिहास मानते हैं कि युद्ध के प्रभाव ने आगे चलकर यूरोप की राजनीति को गहरा प्रभावित किया। दोस्तों, 19 जुलाई 1976 को नासा की वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजनी शुरू की। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। आज जब हम चंद्रयान और गंगायान जैसे भारतीय मिशन्स पर गर्व करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसमें पूर्वी मानवता साथ चल रही है। तो दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ दशकों में साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। 19 जुलाई हमें याद दिलाता है कि नए आविष्कार और रिसर्च भी देश की प्रगति का आधार होते हैं। आज ISRO और DRDO, IIT और देश के कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो सो आइए इसी के साथ लेते हैं हमारे म्यूजिकल ब्रेक का ये तीसरा गीत।

0: दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुनेंगे तागिन भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन गलो 2026 आनीग सिंगोपोलो आलु लोरिंग लोकियान संडे अरुग बाजे अकन चोम गोल अंगो मिनट गु अंग बोय नाम सुरुगुल ग तागिन प्रोग्राम मको गुइ लाइनि ग बिन ताम गुइ नसि ताजांग राय मयुग बाजे मयुग आलु ग बाजे रिंग गुल अंग अंगो मिनट येलो आंध्र प्रदेश मोकु ग श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर लोक इंडिया सो अक प्राइवेट लिब डेवलप कुनाम ऑर्बिटल रॉकेट गुनी विक्रम वन ग आरा लोक मिशन आगामन गुनी ऑर्बिट तलु चार्च मोपुकुला बिपादुकु ओक सी चार्च तकुला लिंग पिगुला चांगु किलोमीटर ऑर्बिट आउ तलु चातुकु ओक सी चिंगो दोगो सो इंडिया ग लॉन्ग डन कंट्री ब रिदुकु सी प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च को नाम सी ओक सकन स्काई रूट एरोस्पेक ग लॉन्च को नाम ग अलब मंगदुकु ने ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिंपालिन तुकु ओक पीएम मोदी ने मी सो विक्रम वन टीम आजी ग ने मी नि पाम सुतुकु ब गोकला रितुकु ओक सकन रॉकेट लॉन्च को नाम ग कोले ग मिनिस्टर ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी बरिन जितेंद्र सिंह का हरपल ब सोबम लरी तुकु मयुग सटरडे अलोलो कोले सरकार ग होम मिनिस्टर अमित शाह वेस्ट बंगाल स्टेट ग सिलगुड़ी मोकु ग जुमागा ग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ग कैंप लो अंकरला बीएसएफ पर्सनल अजिंगा कारक्सुला गामागु रोमी सुपुकुला बिपालें तुकु ओक नमी प्रहारी सम्मेलन दोंपाम गुनि दोंमेन गला सिंह सिंह जोंगुका लारे तुकु ओके नमी बॉर्डर एरिया लो बार ओके डेट रजिस्ट्रेशन ओके लो ऑर्डर प्रॉब्लम ग पले बका गामागु रोमिसुला रितुकु अदर एप सोंग करोर अपी लले गुब नि मनंग डाउनलोड पकु ओके सी मनंग ब मंगजिंग न डिजिटल पर सर्विस गुब रिदुला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ आईटी लोक बिंपाला रितुकु ओके सकने एप सोंग मिलेनियल लोकोंग अजे लुकोव लाक रिंग गुला अकिन एड्रेस गु अपडेट पकु ओक चाम्प गुला अकिया लाक मोबाइल नंबर गु अपडेट पकु ओक रिंग गुला अकिया मिलियन टाइम्स गुब बायोमेट्रिक लॉक ओक अनलॉक ने फैसिलिटी ब रिदुकु नला बिंपालें तुकु किलोग प्राइडे अलोलु पासीगत वेस्ग एमएलए बरेन निनोंग इरिंग द पीएस लो सोइल इरोजन कंट्रोल लो काम का रिनामगा काकरला नंपांगनि आजिंगा काम सोंग अलबे मॉनिटर तकला बिंगन्यकुब ओक काम रिन मोदुब पान मोरकोगु जिलिन जिपकुला बिंपादुकु ओक एमएलए बेनामग गांगबुरा ओक पंचायत मेंबर नोले सो काम का सोंग अलबे काया तया तकला बिंगन्यकुब किलोग प्राइडे अलोलु अपतानी बाप्टिस एसोसिएशन ग लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ग्याती ताका जोनल जनरल हॉस्पिटल जीरो ग लेकिन ब ब्लड डोनेशन कैंप गो रिग पकु ओक सु चोम गुला अक ओय ब्लड यूनिट गो लाखोम लारी तुकु ओक सी रिंग यूनिट गो ब ए पॉजिटिव ओक बी पॉजिटिव गो ब लाखोम तुकु ओक रिंग गुला अपी ओ पॉजिटिव ओक अनि यूनिट गो ब ए बी पॉजिटिव गुब लाखम लापाला रितुकु मयुग सटरडे अलोलु जीओसी पाइप माउंटेन डिवीजन ग मेजर जनरल बरेन

0: Ami Natial Major Bob Kating Memorial Mejom Tawang District Lo School Ok Injo Ajida Denga Computer Set Ok Traditional Nas Renana Ajia Be Custom Go Jilin Pekula Bimpar Gunkuba India Meteorological Department IMD Lokal Bimpa Kunam Nge Arunachal Pradesh Nge Papompare Oke Lohit District Nga Seluni Red Alert Gu Jila Nyedo Dogong Doryak Mo Ke Gunalu Achal Be On Di Ke La Bimpa Duku Oke IMD Nge Benda Nama District Akanyi Bunyi Orange Alert Gu Jila Rituku Oke Si West Coming East Coming Kurungkume Pake Kesang East Yang Tiram Oke Changlang District Nge Oke Ringgula Anyi District Gulka Yellow Alert ku Jilaria Rituku Tiana jeta gini song nulu Akashvani Itanagar Oke Arun FM 103.1 MHz Loke Tepanya do Oke Badminton Indian Sattler Oke Lenyi Tayam Be Olympic Medalist Pane PB Sindhu Japan Ge Tokyo Lu Japan Open Women Single Title Final Lu Challenge Peku Oke, nemi ke Eriki Sunam World Number 4 ke Oke, China ke Chen Yupi ni second match rekulu retire kunam lega Oke, Sindhu nemi selunyi Japan Open title ke final nga Japan ke Akane Yamachu ni Ritsut ke tuku seru ke Taigen kami ni ngebintam sengka hebo Si Akashvani Itanagar Station nge seru ke tagin biribi pakat coba.
1: Dosto abhi aap sun rahe the tagin bhasha mein samachari Akashvani Itanagar Karun FM 103.1 MHz se. नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और लेकर आई हूं 19 जुलाई का विस्तृत मौसम विशेष अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं ऑफिस स्कूल कॉलेज या किसी सफर पर जा रहे हैं तो अगले कुछ मिनट जरूर हमारे साथ बने रहिए जुलाई का महीना अरुणाचल प्रदेश में मानसून का चरम समय होता है हर तरफ हरियाली पहाड़ों पर बादलों की चादर नदियों के तेज बहाव और ठंडी हवाएं की इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है लेकिन इसी के साथ लैंडस्लाइड वाटर लॉगिंग और स्लिपरी रोड्स जैसे चैलेंजेस भी होते हैं इसलिए मौसम की सही जानकारी बहुत ही जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं पापमपारे डिस्ट्रिक्ट और ईटानगर कैपिटल रीजन की आज ईटानगर नाहरलगन निर्जली और दोईमुख के अधिकांश इलाकों में दिन भर बादल छाए रहेंगे बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है दिन का अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की अनुमान है जो लोग बंदरदेवा होलोंगी एयरपोर्ट या ईटानगर से बाहर सफर करने वाले हैं उनसे निवेदन है कि निकलने से पहले रोड और ट्रैफिक अपडेट्स जरूर लें वेस्ट कामिंग के बॉमदिला दिरांग और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे कभी हल्की तेज हवा बारिश हो सकती है पहाड़ी सड़कों पर फॉग और स्लिपरी कंडीशंस की वजह से ड्राइवर्स को सावधानी बरतनी होगी तवांग डिस्ट्रिक्ट में मौसम ठंडा और सुहाना भी रहेगा दिन भर बादल और बारिश के साथ कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है यात्रा करने वाले लोग वार्म क्लोथ्स और रेनकोट जरूर साथ रखें जीरो वैली में हरियाली अपने पूरे स्वभाव पर है आज दिन भर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है आपातानी वैली का मौसम काफी सुहाना रहेगा सेप्पा और आसपास के इलाकों में दिन भर बादल और बारिश का दौर बना रहेगा कुछ पहाड़ी सड़कों पर छोटे लैंडस्लाइड की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में इंटरमीडिएट रेनफॉल की संभावना है जंगल के इलाकों में रहने वाले लोग और फॉरेस्ट स्टाफ को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026।
2: दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
6: इंडियन इकोनॉमी.
7: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है. हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं. हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% हैं.
6: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे.
5: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं. जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं. पनामा के विदेश मंत्री

0: वियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी, एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अगला कार्यक्रम पेश है हेलो ईटानगर, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
3: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। ये विषय है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र एक सोच है, एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा विश्वास है जहां हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार मिलता है और दूसरों की बात को ध्यान से सुनने की भी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आज देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अपनी अपनी चिंताओं और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण धरना, एक पीसफुल प्रोटेस्ट अनशन चल रहा है जहां भाग लेने वाले लोग शिक्षा और अन्य जनहित के मुद्दों पर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह देश भर में कुछ युवा और छात्र भी नीट परीक्षा से जुड़ी चिंताओं और पेपर लीक केज स्कैम के आरोपों के संदर्भ में अपनी बात शांतिपूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। इन मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया चलती रही है। और दोस्तों, हमारे अपने अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ नागरिक और युवा आकाशदीप ईटानगर से लेके IG पार्क के टेनिस कोर्ट तक एक शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से अपनी एकजुटता यानी सॉलिडेरिटी के लिए व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे किसी भी मुद्दे पर अलग अलग विचार क्यों न हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम अपनी बात शांति, सम्मान और कानून के दायरे में रखते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर का पहला गीत। आप सुनेंगे इसे लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, मूवी सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ से।

music 就是开头，你可以。

दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जहां हम बात कर रहे थे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, साथ ही हमें ये भी याद दिलाता है कि हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इसीलिए हम जब भी किसी मुद्दे पर अपनी बात रखें तो हमें दूसरों के अधिकारों और कानून का भी सम्मान करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से शांति, सद्भाव और भाईचारे की भूमि रही है। यहाँ विभिन्न जनजातियां, भाषाएं और परंपराएं एक साथ मिलजुल कर रहती है। इसी विविधता में हमारी एकता छुपी हुई है। जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ चलकर अपनी बात रखते हैं तो ये सिर्फ एक रैली नहीं होती, ये नागरिक भागीदारी का एक रूप होता है। ये बताता है कि लोग अपने समाज और देश के प्रति जागरूकता है, लेकिन साथ ही ये उतना भी जरूरी है कि संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रहें। जब लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और मिलकर समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तभी लोकतंत्र और भी मजबूत होता है। हमारे देश का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि शांति और अनुशासन के साथ उठाई गई आवाज भी बहुत प्रभावशाली हो सकती है। आज के युवा देश के भविष्य हैं, इसलिए उनका जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हर बात को सच्ची जानकारी के साथ समझा जाए। सोशल मीडिया के युग में किसी भी खबर को बिना जांच के आगे बढ़ना ठीक नहीं है। हमेशा जानकारी प्राप्त करें और जिम्मेदारी के साथ अपनी राय बनाएं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आप सुनेंगे श्रेया घोषाल की मधुर आवाज में देवदास फिल्म से।

श्रोताओ, यह आकाशवाणी ईटानगर गरुण एफएम है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए वार्ता करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक

0: चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर की ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: है। श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्र में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मयामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रीशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलोग्राम और 57 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both the Houses of Parliament.

सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चे में होने वाली फिल्म अल्फा की। यशराज स्पाई यूनिवर्स की ये एक्शन फिल्म पर पहली बार आलिया भट्ट और शर्वरी लीड एक्शन रोल्स में नजर आ रही हैं। फिल्म में स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस और स्पाई ड्रामा देखने को मिल रहा है। फैंस को फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स का कंसेप्ट काफी पसंद आया और इसकी डिजिटल रिलीज को लेकर भी काफी उत्साह बनी हुई है। अब बात करते हैं कॉमेडी की धमाल 4 से। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जफरी की मस्ती भरी फिर एक बड़े पर्दे पर लौट आई धमाल 4 के साथ। फिल्म अपनी कॉमेडी, कन्फ्यूजन और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए काफी पसंद की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है और ऑडियंस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप स्ट्रेस को भूलकर सिर्फ हंसना चाहते हैं तो ये फिल्म वीकेंड के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी वेलकम टू द जंगल की। फिल्म में कॉमेडी के साथ एक्शन और बहुत बड़ा एंसेंबल कास्ट देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म अभी चल रही है, हालांकि नई रिलीजेस की वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की डिमांड बनी हुई है। इसके ओटीटी रिलीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है।

दोस्तों अब नजर डालते हैं एक इंटरनेशनल मेगा रिलीज पर। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी दुनिया भर के सिनेमा लवर्स के बीच जबरदस्त चर्चा में है। ग्रैंड विजुअल्स, हिस्टोरिकल एडवेंचर और सिनेमैटिक स्केल की वजह से फिल्म थिएटर्स में काफी अटेंशन खींच रही है। भारत में मूवी लवर्स के लिए इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना बहुत पसंद कर रहे हैं और सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिल पसंद करने वालों के लिए ऑब्सेशन भी ऑडियंस को काफी अपनी तरफ खींच रही है। ये इस जॉनर की फैंस इस तरह की कहानियों को काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। जुलाई का महीना सिनेमा लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहा है। एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर हर जॉनर की फिल्म थिएटर्स में देखने को मिल रही है। अगर आप फैमिली के साथ मूवी प्लान कर रही हैं तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। दोस्तों आइए इसी के साथ लेते हैं हमारा कार्यक्रम का पहला म्यूजिकल ब्रेक। टूटा

दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, जहां हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स और मूवी थिएटर्स में क्या क्या चल रहा है। तो अब चलते हैं ओटीटी की दुनिया की तरफ। अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट एंजॉय करना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते कई नई वेब सीरीज और फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई हैं। क्राइम, रोमांटिक ड्रामास, कॉमेडी सीरीज और रीजनल कंटेंट लगातार ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं। साउथ इंडियन सिनेमा का कंटेंट भी ओटीटी पर काफी पॉपुलर बना हुआ है और हिंदी डब्ड वर्शंस को भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्री सीरीज और ट्रू क्राइम शोज भी ट्रेंड कर रहे हैं, जिन्हें व्यूअर्स बिंज वॉच के लिए पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री में फिलहाल कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग चल रही है। कई नए एक्टर डायरेक्टर्स कोलैबोरेशंस की अनाउंसमेंट को भी हो रही है और फैंस ईगरली ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि तुम्बाड 2 की शूटिंग शायद हो रही है और शायद आलिया भट्ट ने इस मूवी को साइन किया है। तो इस साल बॉलीवुड में एक्शन और कॉमेडी दोनों जॉनर काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। फिल्मों के साथ साथ उनके सॉन्ग्स भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। रोमांटिक मेलोडीज से लेकर डांस नंबर तक नई प्लेलिस्ट म्यूजिक लवर्स के फोन्स और स्ट्रीमिंग एप्स पर छाए हुए हैं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है भागी फिल्म से। आप इसे सुनेंगी मीर ब्रोस और मोनाली ठाकुर की मधुर आवाज में।

0: दोस्तों, म्यूजिक का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
4: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों, मेरी वीकेंड की रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए. अगर इस वीकेंड आप थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक्शन के लिए आप देख सकते हैं आलिया भट्ट और शर्वरी के अल्फा. कॉमेडी के लिए आप देख सकते हैं धमाल 4 या वेलकम टू द जंगल. और ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आप देख सकते हैं क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्टेड ये फिल्म द ओडिसी. और अगर आप घर पर ही वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो ओटीटी पर नए शोज और मूवीज की लंबी लिस्ट आपका इंतजार कर रही है. तो दोस्तों, फिलहाल बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया से इतना ही. आपको इनमें से कौन सी फिल्म देखने का सबसे ज्यादा इंतजार है हमें जरूर बताइए. मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मुस्कुराते रहिए, फिल्में देखते रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए. मैं फिर मिलूंगी बॉलीवुड की और भी गर्मा गर्म खबरों और मूवी अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. और दोस्तों, हमारे म्यूजिक का सिलसिला जारी रहेगा.
3: गाड़ियां हो तो

0: गाड़ी नहीं यार, GF हो तो ऐसी
1: ऐसी GF के लिए जिगरा चाहिए। If you think you got it, go tell her.
0: ये ले।
2: Let's go, boys.

0: क्लिक ऑन।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वह राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वह मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया के लिए रवाना होंगी। ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जांजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिनवेई भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए विकल्पों पर बातचीत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेंगे। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। एस्टोनिया उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: Non-performing loans at under 1% today.
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव भी हो सकता है। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both the houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency NTA has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or AI generated.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और अब वक्त हो चला है हमारे सबसे खास और दिल के करीब सेगमेंट रेडियो ऑन डिमांड में आप सभी का स्वागत करने का। ये वो महफिल है जहां शुरू के जरिए जुड़ते हैं दिल और हर गाना लेकर आता है किसी की याद, किसी की मुस्कान और किसी का प्यार भरा पैगाम। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो, सफर पर हो या अपने काम में व्यस्त हो, हम आपकी पसंद के गीत आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड, जहां भेजेंगे आपकी फरमाइश के गीत सिर्फ आपके और आपकी तरफ से। अगर आप भी अपने पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं या किसी अपने के नाम एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें अपनी फरमाइश भेजना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है रेडियो ऑन डिमांड, जहां हर गीत के पीछे छुपी हुई होती है एक खूबसूरत कहानी। तो आइए दोस्तों आज की पहली फरमाइश की ओर चलते हैं। और आज की पहली फरमाइश हमें आई है पोयहम हम नेतिया से, जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो पोयहम जी ने ये लता मंगेशकर के द्वारा गाए हुए इस गीत का नाम है तू कितनी अच्छी है और ये है फिल्म राजा और रुक से। तो पोयहम हम नेतपा जी ये फरमाइश ये गीत आपके लिए।

तो दोस्तों अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। अगला फरमाइश है हर्षित गोस्वामी से, जो कि असम के रहने वाले हैं। तो शुक्रिया हर्षित जी, आपकी प्यारी सी फरमाइश हमें मिली और हमें बहुत खुश है कि आप रेडियो ऑन डिमांड के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब वक्त है एनर्जी को और हाई करने का। अगला गाना है झूमे जो पठान, और फिल्म पठान से इस गाने ने अपने जबरदस्त बीट्स और धमाकेदार वाइब्स के साथ हर किसी को झूमने पर मजबूर किया है। तो हर्षित गोस्वामी के नाम और हमारे सभी प्यारे श्रोताओं के लिए, सुनिए और एंजॉय कीजिए झूमे जो पठान, पठान फिल्म से।

0: दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जारी रहेगा हमारा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions.
3: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
4: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
3: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
4: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
3: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
4: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
3: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
4: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: दोस्तों हमारी अगली फरमाइश आई है, जो है देवशीष हजारिका जी से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवशीष जी, आपने हमें अपनी खूबसूरत फरमाइश भेजी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो देवशीष जी असम के माजुली से हैं। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड माना जाता है और अपने समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी परंपरा के लिए पूरे देश में मशहूर है। तो देवीशीष जी और हमारे तमाम श्रोता के लिए पेश है एक बेहद ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत फिल्म दिल से। इस गीत का नाम है ए अजनबी।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में और इस वक्त हम बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर. अगला फरमाइश आई है हमें रोमेश पात्रो, लक्की पात्रो और रूनू पात्रो से जो कि सुनीतपुर असम के रहने वाले हैं और उन्होंने ये गीत को डेडिकेट किया है अपने दोस्तों के नाम. तो इस गीत का नाम है जब से तेरे नैना, जो है सांवरिया फिल्म से.

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500.
3: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जो आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम है। और दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपनी गीत की फरमाइश भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। नंबर है 9436887808 पर। दोबारा रिपीट कर दूं, नंबर है 9436887808 पर। इस पे आप हमें अपनी मनपसंद गीत की फरमाइश भेजें और हम यहां पर हैं आपके लिए या आपका मनपसंद गीत पेश करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश आया है हमें चाचा वांगसू जी से, जो कि तिराप डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा वांगसू जी, आप तिराप डिस्ट्रिक्ट से पहली बार हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। रेडियो ऑन डिमांड पर आपका दिल से स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे इस सुरीली परिवार का हिस्सा बने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह की पसंद के गीत और प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें भेजते रहेंगे।

तो चाचा वांगसु जी और हमारे सभी श्रोताओं के लिए पेश है एक बेहद ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला गीत। इस गीत का नाम है हमको दीवाना कर गए, फिल्म हमको दीवाना कर गई से। तो सुनिए, गुनगुनाइए और इस खूबसूरत गीत का लिफ्ट उठाइए।

0: sir.
1: What's the time?
2: शुदाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड.
3: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
4: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
5: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों अब वक्त है हमारे अगली फरमाइश की ओर बढ़ने का. अगला फरमाइश हमें आया है किसी श्रोता से. उन्होंने ये गीत रन फिल्म से चैन हो गीत की फरमाइश की है और उन्होंने इस गीत को अपने दोस्तों के को डेडिकेट किया है. उनके दोस्तों का नाम है भाई कौन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रोमेश पात्रो, लक्की पात्रो, सुनीता पात्रो, प्रेमिका, अंजलि देवीशीष, नीलोत्पाल द्वारा और ऑल फ्रेंड्स. और श्रोता का नाम है अमल बसुमतारी. तो दोस्तों आइए उनकी फरमाइश पर सुनते हैं आप सभी श्रोताओं के लिए ये गीत रन फिल्म का.

दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश आया है हमें ये नाहरलगुन की रहने वाली जिसका नाम है ताबा अंजुम, और उन्होंने ये आफा फिल्म का सबसे लेटेस्ट गाना जो रिलीज हुआ है उसकी फरमाइश की है, और इस गीत का नाम है द मैसेकर सॉन्ग।

दोस्तों इसी के साथ होती है आज के कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड यहीं पर समाप्त। आशा है कि सभी गीत इस कार्यक्रम में जो पेश हुए हैं आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ आपके इस सफर में आरजे लूसी, और इस कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक तीतांजांग तथा तकनीकी अभियंता वीसी शर्मा। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा जारी रहेगी आरजे नूरी के साथ, जो अब स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। तो मुझे दीजिए आज्ञा, शुभ दिन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा रहेगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की ये यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिविनी भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। बैठक के दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के समूचे दायरे की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी आज जंजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से ये अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं और दोनों ही परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस साल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया में दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: Non-performing loans at under 1%.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu has embarked on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia, and Romania today. On the first leg of her visit, the president will reach Moldova tomorrow, where she will meet and hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart, Maia Sandu. President Murmu will also meet the president of Parliament of Moldova, Igor Grosso, and will interact with the members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the president will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President of Zanzibar and chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. Zanzibar is a semi-autonomous region of Tanzania. It has its own constitution, president, House of Representatives, and flag. During the meeting, both leaders will review the entire spectrum of India-Tanzania relations and explore new avenues for future cooperation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on the visiting dignitary today. The MEA said that as partners in the Global South,

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोता, नुसार एन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज के दोपहर प्रसारण सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे ही मैं आ गई हूं, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रातःकालीन प्रसारण की आरजी लूसी का, जिन्होंने अपने सहज और खूबसूरत अंदाज में कार्यक्रम को संपन्न कर स्टूडियो की जिम्मेदारी अब हमें सौंप दी है। मैं हूं आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजी नूरी। मेरे साथ है प्रसारण अधिकारी पी डोले और तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे तकनीकी अभियंता टिमटिम। तो आइए इस सुहाने बरसाती दिन की शुरुआत करते हैं संगीत की मनमोहक फुहारों के साथ। पेश है हमारा पहला संगीतमय पड़ाव फिल्मी लहर, जिसमें आज सुनेंगे मोहब्बत और जुदाई, भीगी यादों और प्यार भरे एहसासों से सजे चुनिंदा सदाबहार और लोकप्रिय बॉलीवुड गीत। तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज के प्यारे श्रोता दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि बरसेगी सुरों की फुहार, महकेंगी यादें और संगीत की ये बारिश आपके इस दिन को बना देगी और भी खूबसूरत। सुनिए फिल्मी लहर, और फिल्मी लहर में हम करेंगे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर मौसम को अपना बना लेती है और जब मौसम में बारिश की नमी धुल जाए तो प्यार की हर याद और भी गहरी हो जाती है। कभी किसी की मुस्कान याद आती है तो कभी किसी के साथ बिताए हुए वो पल जो आज भी दिल के किसी कोने में महफूज है। इसी एहसासों के साथ सुनते हैं ये पहला गीत।

दोस्तों कहते हैं मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होती है, एक ऐसा एहसास जो दिल में चुपचाप उतर जाता है और फिर हर धड़कन में अपना घर बना लेता है। कभी किसी की मुस्कान पूरी दुनिया से ज्यादा प्यारी लगने लगती है तो कभी किसी का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। दोस्तों लेकिन हर प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कुछ रिश्ते उम्र भर साथ चलते हैं और कुछ अधूरी दास्तान बनकर यादों में बस जाते हैं। जुदाई भले ही फासले बढ़ा दे लेकिन सच्चा प्यार अक्सर वक्त और दूरियों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। दोस्तों हिंदी सिनेमा ने मोहब्बत और जुदाई के इन तमाम एहसासों को अपने गीतों में इतनी खूबसूरती से सजाया है कि हर नगमा किसी न किसी की अपनी कहानी बन जाता है। कहीं पहली मोहब्बत की मीठी धड़कन है, कहीं बिछड़ने का गहरा दर्द, तो कहीं मिलने की खुशी है, तो दोस्तों कहीं किसी अपने के लौट आने का खामोश इंतजार। तो आइए आज की फिल्मी लहर में हम निकलते हैं प्यार के इन्हीं रंगों से सजे एक खूबसूरत संगीतमय सफर पर। इस सफर में होंगे इश्क के महसूस मासूम लम्हे, रिश्तों की गहराई, भीगी यादों की महक और जुदाई के वो अनकहे जज्बात जिन्हें हिंदी फिल्मों के सराहनीय गीतों ने हमेशा के लिए अमर बना दिया है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आप सबके चहेते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त फिल्मी लहर। और फिल्मी लहर में जैसे कि मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ मोहब्बत, यादें और जुदाई के कुछ लम्हे फिल्मी गानों के माध्यम से। चलिए सुनते हैं अगला जो गीत है वो हमारी किस इमोशन को बयान करता है।

तो श्रोता दोस्तों, फिल्मी लहर का यह अंग आज का यहीं पे समाप्त होता है इस खूबसूरत गीत के साथ। तो दोस्तों, बस मोहब्बत करते रहें और मोहब्बत जो आपकी जिंदगी में आई है उसे संजो कर रखें। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है, और जिस तरह से गुलजार साहब ने कहा है कि बस अपने महबूब की याद आ जाए और मौसम सुहाना हो जाता है, ऐसे ही आपकी जिंदगी का मौसम भी हमेशा सुहाना रहे। चलिए, फिल्मी लहर से आगे निकलकर हम चलते हैं पाश्चात्य संगीत की दुनिया में और सुनते हैं वेस्टर्न मेलोडीज़।

दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही पलों में यानी कि 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के साथ आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, यादों और संगीत का यह सफर जारी रहेगा, तो बने रहिए आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 बजे आप हिंदी में समाचार सुन पाएंगे और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच

0: को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हैं दिल से दिल की बात करने को आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद और देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के बाद अब वक्त हो चला है फिर से चलने का गीतों के सफर में मेरे साथ, यानी आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, कहते हैं ना कि हिंदी फिल्मों के गीत सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होते। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर एहसास को अपनी धुनों और अल्फाज में समेट लेते हैं और इस बात से आप भी जरूर सहमत होंगे। खुशी हो या गम, मोहब्बत हो या जुदाई, उम्मीद हो या संघर्ष, हर भावना के लिए बॉलीवुड ने हमें एक यादगार गीत जरूर दिया है और इस बात को आप जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा बचपन से है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इन्हीं गानों के साथ अपनी जवानी, बचपन और अपने जो वृद्धावस्था है वो गुजारा है। और आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, तो वो कोई ना कोई हिंदी फिल्म गाना ही आपको सुझा देगा। ये बहुत ही आम सी बात है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत नगमा जो अपनी मधुर संगीत, दिल को छू लेने वाले बोल और बेहतरीन गायकी की वजह से आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। और आपको याद दिला दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी

0: तो दोस्तों फिल्मी सॉन्ग्स के कार्यक्रम में चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से लौट कर आएंगे और करेंगे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। तो ये आकाशवाणी कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आज के सफर में।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
4: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
3: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
4: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
3: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
4: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
3: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
4: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम को सुनने वाले हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के कार्यक्रम में। और मैं हूँ आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी, और सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि हर बार सुनने पर कोई नई याद, कोई नया एहसास और कोई नई मुस्कान दे जाती है। यही तो जादू है हिंदी फिल्मी संगीत का, जो पीढ़ियों बदल जाने के बाद भी दिलों की धड़कनों में बसा रहता है। चलिए अब इसी खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और शानदार बॉलीवुड गीत।

दोस्तों, संगीत की दुनिया में हिंदी फिल्मी गानों का अपना ही रंग है। कभी ये हमें गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं तो कभी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इन्हीं सुरों के साथ आज की महफिल की ओर बढ़ते हैं और आज के इस दिन को और भी हसीन बनाते हैं। लीजिए सुनिए एक और बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीत मेरे साथ, यानी आरजे नरेश के साथ।

दोस्तों, हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का यह कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही यहीं पे समाप्त होगा, लेकिन गानों का सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आज के सफर में। दोस्तों, अगला कार्यक्रम हम सभी के लिए बड़ी गर्व

की बात है क्योंकि हमने ये सजाया है हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए और ये हमारा दैनिक कार्यक्रम है उनको समर्पित कार्यक्रम गीतमाला। चलिए सुनते हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों को सैल्यूट करते हुए उनको सम्मान करते हुए उनके सम्मान में सजाया गया कार्यक्रम गीतमाला।

0: कार्यक्रम गीत माला श्रोता दोस्तों इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में यानी कि एक बजते ही आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे 1:10 पर हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ 60s to 80s के साथ। तो बने रहे आकाशवाणी के रन एफएम के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र

जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुबिनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, एआई, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों और गीतों का संगम है आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। अब वक्त हो चला है मेरे साथ यानी आप सबके अपने रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ एक और सुनहरे सफर पर चलने का, गीतों का। जी हाँ, वक्त है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s to 80s को आप तक पहुंचाने का। चलिए आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं 60s के कुछ अनमोल गानों की तरफ और पहला ही गीत है लाल छड़ी मैदान खरी। दोस्तों, यह गीत फिल्म जानवर से ली गई है जो कि 1965 में आई थी। इसे गाया है रफी साहब ने और बोल है हसरत जयपुरी के और इसे संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और फिल्मी सितारे इस फिल्म में मेन रोल यानी कि स्टारकास्ट है शमी कपूर, राजश्री और इसे निर्देशित किया था बप्पी सोनी ने। दोस्तों, 1960s के अनमोल गानों को जब YouTube पर 4 महीने पहले यानी कि 8 मार्च को जब अपलोड किया तो देखिए हमारे जो श्रोता है उनका क्या कहना है। दोस्तों, आज के जितने भी नौजवान हैं उनका यही कहना है कि मोहम्मद रफी साहब, शंकर जयकिशन साहब ग्रेट लिरिसिस्ट, एक्टर्स ग्रेट, कलर प्लीजिंग एंड ऑल आर अस ग्रेट एंड द पीरियड इज गोल्डन एरा। इनका शॉर्ट में यही कहना है कि 1960s यानी कि सुनहरे दौर का सिनेमा, हिंदी सिनेमा का वो एक सुनहरा दौर था यानी कि गोल्डन एरा था। तो दोस्तों, आप तक पहुंचाने का हमारा यही मकसद है कि आप तक पहुंचाए यानी कि आज के जनरेशन के उन सिंगर्स और उन लिसनर्स तक पहुंचाए हमारे सिनेमा के गोल्डन एरा के कुछ गोल्डन सॉन्ग्स। तो पहला गीत लाल छड़ी मैदान खड़ी।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज अरुण एफएम पर इस वक्त आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गानों का क्लासिक म्यूजिक 60s फ्रॉम 80s। तो आज हमने कॉन्सेंट्रेट किया 1960s के कुछ अनमोल फिल्मों और इन फिल्मों के कुछ गानों को। दोस्तों, अगला गीत हम कश्मीर की कली से ले रहे हैं, जो कि 1964 में आई थी, और इस गीत के बोल है दीवाना हुआ बादल। शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर के इस फिल्म को बहुत लोगों ने पसंद किया। इसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और इसके संगीत से सजाए ओपी नैयर ने। दोस्तों, इस गीत को अपलोड किए 1 साल हुए और आज भी जो श्रोता है वो लिखते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में एक ऐसा कौन सा गाना सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती है। और कई लोगों ने इसे इस सवाल पर रिप्लाई करते हुए कि तुम मुझे यूं भुला न सको, रफी साहब आवाज से आंखें नम हो जाती है, सॉन्ग कोई भी हो, कहता है एक लिसनर। और कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ऐसे बहुत सारे गानों का जिक्र हमारे आज के श्रोताओं ने किया है। और साथ ही साथ हमारे एक श्रोता ये भी

देखते हैं कि आई थिंक जिनजीज आर जस्ट मिस अंडरस्टूड. आई मीन आई एम 20 एंड इट्स 7 इन द मॉर्निंग एंड आई एम लिसनिंग टू दिस मास्टरपीस मैन. मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा ताई, लता ताई एंड बहुत सारे लोग, यार आपके बिना क्या करती मैं. वी ऑल ऑलवेज रिमेम्बर यू. ये एक जेंजी का कॉमेंट है. इसका मतलब हम जेंजी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि उनको बस धड़क धड़क वाले गाने ही पसंद है, ऐसे मास्टर पीसेस पसंद नहीं है. तो हमारी यही कोशिश है कि हर जनरेशन के जो हमारे लिसनर्स है आकाशवाणी के रन FM 103.1 MHz के लिसनर्स है, उन तक पहुंचाए हर दौर के गाने. और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुनहरे दौर के गानों को, यानी कि क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s. और आज हमने चुना है 1960s. चलिए अगला गीत, दीवाना हुआ बादल.

दोस्तों, इन पुराने गीतों को सुनकर हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में सोचता था लोग गाना क्यों सुनते हैं, जब बड़ा हुआ तो पता चला कि कितना सुकून देता है ये गाने। जी हाँ दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि आपको सुकून दिलाए, आपके दिन को बेहतर बनाए और आपके मन में ये जगाए कि गानों के माध्यम से हम कर सकते हैं दिल से दिल की बात। ये आकाशवाणी का रन FM 103.1 MHz और आज के सफर में मैं हूँ आप सबके साथ, आपकी अपनी आरजे नूरी, और सुन रहे हैं 1960s से 80s के सुनहरे नगमे। दोस्तों, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गुमराह फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में, जो कि 1963 में आई थी फिल्म। और इस गीत को सुनते हुए और देखते हुए किसी हमारे श्रोता ने लिखा है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ जाना अच्छा। बेहद ही गहरे भाव से हमारे श्रोता ने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं।

श्रोता दोस्तों, अगला जो गीत है, इस गीत को सुनकर आज के जो श्रोता है वो लिखते हैं, हाउ बिलो वी हैव फॉलन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लिरिक्स दैट आर ऑफर्ड इन टूडेज म्यूजिक. दिस इज रिटन इन सच अ ब्यूटिफुल पोएटिक येट मीनिंगफुल वे बाय साहिर साहेब दैट ब्रिंग्स शेम टू टूडेज लिरिक राइटर्स. आई होप वन डे दिस एरा ऑफ क्वालिटी लिरिक्स राइटिंग रिटर्न्स एंड आई एम dare to enjoy that. Till then, thank you YouTube for keeping these gems alive. यानी कि YouTube पर जैसे ही इस गीत को अपलोड किया है, हमारे श्रोता ये लिखते हैं. दोस्तों, ऐसे ही गानों को आप तक पहुंचाने का हमारा ये कोशिश आप बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं. इस बात का ये जवाब है कि हमारे जो श्रोता है अरुण FM 103.1 MHz पर, तो इस वक्त भी हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं. वो लिखते हैं, आरजे नूरी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स टू अस. आज के तरकते धरकते गानों के बीच ऐसे गीत को सुनकर हमारा ये सफर बेहद ही खूबसूरत जा रहा है. थैंक यू सो मच हमारे जो श्रोता है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो चलिए, अगला गीत जो मैं आपको बता रही हूँ वो गीत है फिल्म बहू बेगम से, जो कि 1967 में आई थी, और इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने. इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी और संगीत से सजा है रोशन लाल नागर ने, यानी कि जिसे रोशन के नाम से जानते हैं. और इस फिल्म को निर्मित डायरेक्ट किया है एम सादिक ने, और इस फिल्म में प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने अभिनय किया है. चलिए, 1960s to 1980s में आज सुन रहे हैं 1960s के कुछ अनमोल गाने, और आप सुन रहे हैं हमें आकाशवाणी के FM 103.1 MHz अरुण FM पर आज ही नूरी के साथ.

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s में अगला जो गीत है वो है भीगी रात, जो कि 1965 में आई थी और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे डायरेक्ट किया है कालिदास ने और गाया है मोहम्मद रफी ने। दोस्तों, इस गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने और इस गीत में जो फिल्म स्टार से, यानी कि इस फिल्म में भीगी रात में जो फिल्म स्टार से, वो अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, कामिनी कौशल, शशिकला और राजेंद्र नाथ। चलिए, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है। आपको बता दूं कि 1960s टू 80s का यह सफर यही इसी गीत के साथ ही समाप्त होगा, लेकिन संगीत का सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के 103.1 MHz पर और हम शुरू करेंगे नई धुनों के साथ हिंदी फिल्मी गाने।

माजरत चाहते हैं इस गीत को ऐसे आधे अधूरे आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वक्त हो चला है नए धुनों का आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि वक्त के साथ साथ चलना भी एक तरीका होता है और अब वक्त हो चला है नए धुनों की बारी। दोस्तों, अगला गीत यानी कि हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं लकी नो टाइम फॉर लव से आके भर लो बाजुओं में। तो इसकी प्रस्तुति कुछ इस तरह से है कि इस वक्त हमारे साथ एक श्रोता यानी कि हमारी रेगुलर लिसनर है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है आलो से जुम्पी जी, और उन्होंने एक प्यारी सी मधुर फरमाइश की है जो मोहब्बत की नरमी और अपनापन अपने सुरों में समेटे हुए हैं, और उन्होंने इस गीत को उनके लिए प्ले करने की फरमाइश भेजी है। वैसे तो फरमाइश का कार्यक्रम आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर चलता है ठीक 10:10 से 11 बजे तक, लेकिन ये खास फरमाइश है, हम प्ले करना चाहेंगे उनके लिए। अगर श्रोता दोस्तों आपको भी सुनना है अपनी फरमाइशी गीत तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर से 9436887808, और आपको इस नंबर पर अपनी जो फरमाइश है उसे भेजना है सुबह के 10 बजे से पहले। तो दोस्तों चलिए जुम्पी जी की फरमाइश पर ये खास पेशकश लकी नो टाइम फॉर लव का ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों चलिए सुनते हैं आखिरी गीत फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। और 2 बजते ही आपको बता दूं, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार सुन पाएंगे। और हम आपके साथ फिर से चलेंगे गीतों के सफर में हिट्स ऑफ 90s के साथ ठीक 2:30 पर। लीजिए सुनिए ये आखिरी गीत इस सेगमेंट का।

0: Parliamentary Affairs, Mr. Kiran Rijiju, seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football, FIFA peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार

0: बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के

0: राष्ट्रपति सेल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल, स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक

एक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz
2: तेरे दिल का मेरे दिल से।
3: श्रोता दोस्तों वेलकम बैक आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर जहां होगी दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के डेली द्वारा प्रसारित मिड न्यूज तथा दोपहर समाचार। तो देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के बाद अब वक्त हो चला फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करने का और सुनने का कुछ हंसी नगमे। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz और हर रोज की तरह 2:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं हिट्स ऑफ 90s। जी हाँ 90s के कुछ हसीन नगमे और कुछ यादें आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों आज का ये खास एपिसोड में खास तौर पर हमारी नई पीढ़ी यानी कि जेन जी और आज के युवाओं के नाम करना चाहूंगी क्योंकि शायद उन्होंने 90s को देखा नहीं लेकिन यकीन मानिए वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था। अगर मैं यूं कहूं तो ये सच है कि वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था बल्कि एक एहसास था। हर कोई आज भी उसी दौर को जीना चाहता है। आज के दौर यानी कि आज की दुनिया बहुत ही तेज हो चुकी है। मोबाइल है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों 90s में चीजें इतनी आसान नहीं थी। जो चीजें आज एक क्लिक पर मिलती है बड़े लंबे इंतजार के बाद मिलता था और वो इंतजार बहुत ही मीठा होता था। वो एहसास किसी के इंतजार का, किसी के चिट्ठी का इंतजार, किसी पोस्ट ऑफिस पर पार्सल का इंतजार, वो इंतजार ही जिंदगी को मजेदार बनाता था। और जबकि आज हर क्लिक पे आपको हर चीज मिल जाती है, चीजों का आपको महत्व समझ में नहीं आता। और अगर किसी चीज को आप पसंद नहीं करते, कोई गाना सुनना नहीं चाहते, उसका फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। इतनी सहूलियत है लेकिन मजेदार चीजें खत्म है, वो एहसास वो मीठा कशिश खत्म है। आपको ये बताते हुए बड़ा चेहरा मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है जब ये कहती हूं कि 90s में चीजें इतनी आसान नहीं थी फिर भी लोग ज्यादा मुस्कुराते थे, रिश्ते ज्यादा गहरे होते थे और दिलों में एक अलग ही सुकून होता था। आज अगर कोई दोस्त रिप्लाई देर से करे तो लोग परेशान हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन 90s में घंटों दोस्तों के घर के बाहर आवाज लगाए उसके बाहर आने का या उसके जवाब आने का इंतजार किया करता था और वो बड़े मजे के साथ करते थे। ऐसा नहीं कि हम डिप्रेस हो जाएंगे, हम नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और हम बस उसे ब्लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ऐसे मजेदार दौर में जो गाने बजते थे, जो सुनते थे, वो भी बहुत सुकून वाला होता था। चलिए शुरू करते हैं हिट्स ऑफ 90s इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज प्लेलिस्ट ऑनलाइन बनती है, और लेकिन जब 90s में हम गाने सुनते थे, तब कैसेट में अपने पसंदीदा गानों को रिकॉर्ड करवाना भी किसी ट्रेजर से कम नहीं लगता था। और एक खाली कैसेट लेकर चुनिंदा गानों को चुनकर उसे उसमें रिकॉर्ड करवाना और उसे पेंसिल से घुमा घुमा कर अपने पसंदीदा गीतों को सुनना, उस जमाने में कितना मजा लगता था। आज तो क्या है, फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़िया से अगर आपको किसी सॉन्ग का कोई पार्ट पसंद नहीं आया, आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हो। बहुत ही आसान हो गई है जिंदगी, लेकिन जो मजे 90s में सुनने का होता था, जो मिलता था सुकून, वो आज शायद बहुत ही कम हो गई है। बिकॉज हम इतने बिजी हो गए हैं जिंदगी में कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज को सुनने, देखने और उसे बर्दाश्त करने का हमारे पास वो पेशेंस नहीं रहा। अगर पेशेंस की बात करें तो 90s के लोगों में जो पेशेंस था ना, वो शायद ही और किसी जनरेशन में हो। और अगर गलती से टेप उलझ जाए तो पेंसिल से उसे ठीक करना, वो भी एक कला हुआ करती थी। जी हाँ, ये भी एक आर्ट था। बहुत ही मजेदार थी जिंदगी। अगर इस वक्त सुन रहे हैं हमें आकाशवाणी के और NFM 103.1 MHz पर हिट्स ऑफ 90s, और जो लोग

हिट्स ऑफ 90s के गानों के साथ अपनी जवानी को अपने बचपन को जोड़ रहे हैं, उनके लिए तो ये कार्यक्रम बहुत ही बेहद ही खूबसूरत है। और जो जेंजी सुन रहे हैं उनके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि पास्ट में यानी कि 90s में जो जिंदगी थी बहुत हल्की पुल्की थी, बहुत ही स्लो थी, लेकिन मजेदार थी और गाने भी बेहद ही मजेदार थी। दोस्तों, आज एंटरटेनमेंट हर मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन तब पूरा परिवार एक साथ बैठकर रामायण, शक्तिमान या ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम देखता था। और रविवार की सुबह रामायण शुरू होते ही गलियां शांत हो जाया करती थी। और उस वक्त ऐसा था कि टेलीविजन हर किसी के घर में नहीं होता था, आज तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी देख सकता है। उस वक्त जिसके घर में टीवी होता था उनके घर में जाने के लिए और टीवी देखने के लिए जाना भी एक ट्रिप जैसा था, यानी कि आज जो फन ट्रिप्स करते हैं ना उसके जैसा ही लगता था, बड़ा मजेदार। चलिए, उस मजेदार बातों को हम जारी रखेंगे ही, सुनते हैं अगला गीत हिट्स ऑफ 90s में, 90s का एक और खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अगर 90s की सबसे खूबसूरत चीजें कोई थी तो वो था हिंदी फिल्म संगीत। उस दौर के गीत सिर्फ गाने नहीं थे, वो लोगों की भावनाएं थी। किसी की पहली मोहब्बत, किसी का इंतजार, किसी की दोस्ती और किसी के टूटे दिल की आवाज। 90s के गानों में शोर कम था, एहसास ज्यादा थे। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसी आवाजें सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर जाया करती थी। और हमारी कोशिश है कि आज के जेंजी को वो सुनहरे, खूबसूरत, सुकून देने वाले संगीत पहुंचाएं और उनसे रूबरू कराएं। लीजिए सुने अगला गीत हिट्स ऑफ 90s, आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, हिंदी फिल्मी गाने जो 90s में बनते थे वो सीधे दिल में उतर जाते थे और ऐसा लगता था कि ये मेरे दिल की जुबां है। शायद यही वजह है कि आज भी 90s के गीत लाखों करोड़ों व्यूज पा रहे हैं, शादियों में बज रहे हैं, रील्स में ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। आज के हमारे इस सफर में भी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं 90s के वो सुनहरे गीत। आप सुन पा रहे हैं हमें आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से और हिट्स ऑफ 90s के गानों के माध्यम से। आपसे कर रहे हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: मिश्मी और टाइक हमती श्रोताओं के कार्यक्रम के बाद आपका स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता दोस्तों, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 3:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम हाजिर है बॉलीवुड अपडेट्स एंड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के कार्यक्रम के साथ। आप सबके साथ मैं हूं आरजे नूरी। चलिए आगे सुनते हैं बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की खबर, जहां हर हफ्ते बड़े पर्दे पर नई कहानियां, नए सितारे और नए रोमांच दर्शकों का इंतजार करते हैं और दर्शक भी इंतजार करते हैं। इस समय सिनेमा घरों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है अल्फा। 10 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी पहली बार एक दमदार स्पाई मिशन पर नजर आ रही हैं। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म होने के कारण इसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो धमाल 4 अब भी सिनेमा घरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी और जावेद जाफरी की मस्ती और मजेदार कारनामे पूरे परिवार को हंसी से लोटपोट कर रहे हैं। जी हाँ, अब आने वाली बड़ी रिलीज की बातें करते हैं। 24 जुलाई को रिलीज होगी रफ्तार, जिसमें राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश पहली बार साथ नजर आएंगे। इसके अलावा सामाजिक विषय पर आधारित द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस भी इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है और पहले से ही काफी चर्चाओं में है। और जुलाई के आखिरी शुक्रवार यानी 31 जुलाई को रिलीज होगी कॉमेडी ड्रामा साइड हॉर्सेस, जिसमें अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना और वरुण शर्मा की टिकड़ी दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएगी। तो दोस्तों, जुलाई का महीना बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक्शन, कॉमेडी और मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आने वाले दिनों में आपके पास बड़े पर्दे पर देखने के लिए कई शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। फिलहाल बॉलीवुड अपडेट्स में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं एक मधुर गीत की ओर। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि हम करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

आठ प्लेस म्याच मजा मायामी स्टेडियममा अबौक्यामा इङ्ल्यान्ड देश ए गोल आजोकोलाई फ्रान्स देश तोलत अन्त्या ए ब्रोन्ज मेडल कपलतले बोमा फ्रान्स देश ए गोल अलिवेकोलाई चोक्ले कहोमा अजङ बाजा बामा हजा फिफा वर्ल्ड कप 2026 अन्क्या होसुक फाइनल म्याच आजा न्यूयोर्क होनोई मक्या न्यू जर्सी स्टेडियम मा अर्जेन्टिना हिया स्पेन देश निबा मा अबापन ए चांगतैले बोमहाजा मैच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मा थाटबा आवन क्या बन अनिबाजी सबन मिनट टू मखंग होवांग वांगई काहो इवई

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हिंदी सिनेमा के गीतों का कार्यक्रम जारी है वांछो श्रोताओं के समाचार के बाद। और अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम तो ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। और आगे आप हमारे साथ जुड़कर सुनना चाहते हैं हिंदी फिल्मी गाने तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो वक्त हो चला है इदुमिश में श्रोताओं के समाचार का।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है इदुमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: इनिया मलिन मचने इदुमिश्मी आहो लाखिजी तिबार पालो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में तानी कांसो आतिका मचि स्टेट लापाय मोल्डोवा नॉर्थ मसाडोनिया दोने रोमानिया मा अतोवे बायो वेचिखा आई महो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में लामे प्रेसिडेंट है आतिका मा अतोवे बायो महो आतिका गेबा मा चिचाई उदा लगा चिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे ची आया इन्हीं

इनामाहों उला चिखा सोशल मीडिया पोस्ट माने लामे मंगल पांडे है अतिका गेबने तंदो जो ही बदा लगा चिखा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ में उनी अनायमा वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट बिचम मची इमो कासो है फाबुया ही बचिखा ऐचा है आयो में तंदो इमाहो माची रू में तंदो माहो आजी इमो है माची में कोलंबो तातिया बचिखा आई महो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर डीडीएमओ गोलनाके ने एनडीआरएफ अनुभव में फाबुया ही बचिखा माची में तान रू माहो इमु रुतोबा इमु अमु है दोजी देसी सो लाइगो खुजुजु दोने ग्लोस दिसो लंदे चिखा आई महो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अतिकाची इमु अलंब्रो गो माची मान्युमा आंगलाम माची मान्युमा बाजिम ना ला ही बचिखा इस कमिंग डिप्टी कमिश्नर यशस्वी बी में एसपी सिविंदु भूषण सो लिबचा भुनी माचिनी लाइ मोया वाटर सप्लाई सोर्स मा अथवा गे बचिखा आई दो डिप्टी कमिश्नर में हेडवर्क इंटेक टैंक ने प्री सेडिमेंटेशन दा बांधो अतुत्या गे बचिखा अथवा गेबा महो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में माची चिपू मा डिसिगो ला क्या ही बचिखा आई महो वाटर ट्रीटमेंट प्लान मा भी अथवा गेबा ने डिपार्टमेंट गो माचा वाटर ट्रीटमेंट प्लान है अप्रम बोजी ना लागे बचिखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई में क्लास हूँ माची सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 रिजल्ट है ला होया ही बचिखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीबीएसई में कानी बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास हूँ माची गेबा ने एतन उन्हें अखपयाम बौदा लगा चिखा मेन बोर्ड एग्जाम है रालापुची जी हूँ तारगे माने मूलापुची जी होलमा तारगे लिबा हाँ ही बा माहो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन है सुलापुची जी होलमा माने जेन्यू खे तारगे लिबा हाँ गाही बचिखा सीबीएसई में लामे एतन उची पुमे परसेंटेज लापाए मेन ने सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा गने रिजल्ट है खिन्यू ताहो पॉइंट इन्हू इन्हू परसेंट लगा चिखा बोर्ड में लामे रिजल्ट ने रिजल्ट है डिजिटल एकेडमिक काकोप्रा है डिजी लॉकर माने ची बाउदा लगा चिखा ली बचा बुनी माची ने टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पी वी सिंधु में अकाने यामागुची वा मेडियन सुपर 750 टाइटल के बने बैडमिंटन तानो एम आई महो जापान ओपन माने आने ही बचिखा आया याकु है इंडिया तिका माची याकुमा है तांदो थ्री टाइम वर्ल्ड चैंपियन दोने अनुनु में प्राग टाइटल चैंपियन जी ही बचिखा सीरीज डिसाइडिंग थर्ड ओडीआई इंडिया ने इंग्लैंड एबया आया था नी लॉर्ड क्रिकेट ग्रांड लंदन माने खेले एम आई या चिखा ऐचा तारो एम आई है ऐता नी इंजाता कासो ने असुहु बाजी मा आखा पयाम बाव चिखा ऑलराउंडर वाशिंगटन ने अंगशा मान्या या बमा हो स्पिन बॉलर ऑलराउंडर हर्ष दुबे है ऐता नी खेले ओ मा ऐतिया ही बचिखा इंग्लैंड में बुनी फ्रांस मा गोल तारोहा गने वर्ल्ड कप मा ब्रॉन्ज मेडल ने थर्ड प्लेस मा किया ही बचिखा आई महो अर्जेंटीना ने स्पेन में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मा यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम मा ने इतनी अम्बोतो फुटबॉल तानो एमआई हुई चिखा इतनी आशाओं से क्या मोने हैं तांडो अन्य मिनट ची आशिचान हुई

श्रोताओं से इधु मिश्री श्रोताओं के समाचार के बाद अब फिर से वक्त हो चला है हमें आपको सुनवाने का हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। 4:06 हो रहे हैं स्टूडियो के घड़ी के अनुसार और इस वक्त हम आपके साथ हैं आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के कार्यक्रम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने।

दोस्तों स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:17 हो रहे हैं और जैसे ही घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हमें इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त हो चला है आप सब से विदा लेने का। जी हाँ, मैं आरजे नूरी आप सब से दूसरी प्रसारण सभा से अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज विदा लेना चाहती हूँ। इसी के साथ ही हमारी दूसरी प्रसारण सभा यही संपन्न होगी। उम्मीद है कि आज की हमारी बातें, मधुर गीत और साथ बिताए ये प्यारे पल आपके दिल में मुस्कान, सुकून और सुनहरी यादें छोड़ गए होंगे। अब समय है हमारी तीसरी प्रसारण सभा का, जिसकी बागडोर संभालने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आप सबके बहुत ही चहेते और प्यारे से आरजे साजिद। अपनी दिलकश आवाज, खास अंदाज और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ आपकी इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं जाएगा नहीं, जुड़े रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रसारण अधिकारी श्री पी डोले तथा तकनीकी अभियंता टिमटिम और मुझे यानी आरजे नूरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ और सुनते रहे ऐसे ही हसीन नगमे। चलिए कुछ ही पलों में यानी कि 4:25 पर आरजे साजिद आपके साथ होंगे गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम के साथ। लेकिन इससे पहले आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ और आपको बता दूं कि 4:20 पर आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों, अगर निभाने की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हां, अभी आप सुन रहे थे तानसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपकी अपनी RJ नूरी के साथ, और आपके सफर में अब जुड़ चुके हैं आपके रेडियो दोस्त RJ साजिद। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में।

दोस्तों गुड इवनिंग। ईटानगर में आज हम बात करेंगे मानसून के मौसम में स्वस्थ रहने के तरीके के बारे में। दोस्तों बारिश की बूंदों की मधुर कलकल, गीली मिट्टी की मनमोहक खुशबू और हरियाली का नजारा किसी को भी इस मनमोहक मौसम से प्यार करने पर मजबूर कर देता है। हालांकि खुशनुमा माहौल के साथ साथ मानसून अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लाता है। जल जनित रोगों से लेकर त्वचा संक्रमण तक इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी ज्यादा देखभाल और सावधानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों बारिश की बूंदें धरती को सींचती है, वैसे ही खुद को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है। मौसम भले ही ठंडा लगे लेकिन नमी से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। गर्म हर्बल चाय, सूप और नींबू या पुदीने जैसे प्राकृतिक स्वादों से युक्त पानी पिएं। इससे ना सिर्फ आपकी प्यास बुझेगी बल्कि जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today.
2: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहाँ हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों मानसून के मौसम में हमारा शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, इसलिए अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, जैसे कि विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरे, अमरूद।

0: और स्ट्रॉबेरी। स्वस्थ आंत बनाए रखने के लिए दही जैसे प्रोबायोटिक का सेवन करें जो इम्यून को बढ़ाए। दोस्तों, बरसात के मौसम में स्वादिष्ट पकवानों की भरमार होती है। भजिया, गर्मा गर्म मोमोज और भुट्टा जैसे मौसमी व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। हालांकि इन व्यंजनों का स्वाद लेते समय संयम बरतना जरूरी है ताकि आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो।
1: Legit.

को नहीं, बात करना उसके बारे में। कुछ नहीं, हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फी नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एसपी बन के रिटायर करता। अभी हम होम्योपैथी की पूड़ी बेचता है। होम्योपैथी

0: बच्चे का बहुत प्यार बढ़ता था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तभी तो उसके इतने चाहने वाले थे।
1: बचपन का यार था मेरा, मुंह का पेच लड़ाया करते थे हम। वो गूंगा बहरा था लेकिन बहुत आकरू था। उसका साथ एक प्रॉब्लम था, वो सोचते लोग उसके छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए हमेशा दोस्ती का परीक्षा लेता था।

दोस्तों, बारिश के मौसम में खान पान के प्रति सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ताजा पका हुआ भोजन चुनें और स्ट्रीट फूड या अस्वच्छ भोजनालयों से बचें। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे खट्टे फलों का सेवन करें ताकि आपकी इम्यून सिस्टम बढ़े और आप संक्रमणों से सुरक्षित रहें।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज और नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी अंगूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में बुलवाई सर्वदलीय बैठक। जांजीबार में राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली म्यूनी ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली म्यूनी से की मुलाकात। डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना चांदी और नकदी बरामद की। सीबीएसई ने कक्षा दसवीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित किया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारतीय दूतावास ने भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर जीता कांस्य पदक। हंगरी में भारतीय पहलवान काजल ने जीता स्वर्ण फाइनल में। अमरीका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सलिया नोस्का दाओकोआ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों देशों ने कृषि, औषधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने में गहरी रुचि व्यक्त की है। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद यह पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सीनेट के अध्यक्ष तथा रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। वह भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री मोदी ने कहा कि उनका श्रेय और सर्वोच्च बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने
एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक में वॉक आउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मैत्रा ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के

0: सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति विमनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली विमनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देश अनेक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति विमनी की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा पारस्परिक हितों के लिए सहयोग को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्धस्वायत्त क्षेत्र जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली विमनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, एआई, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास का जांजीबार परिसर शिक्षा और विकास के क्षेत्र में अफ्रीका के प्रति भारत की घनिष्ठ साझेदारी और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जांजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नगदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई ने नई दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल में अलग अलग कार्रवाई की। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्रा से करीब 1 किलोग्राम तस्करी का सोना मिला। वहीं मुंबई में सोना तस्करी करने वाले का एक गिरोह का खुलासा किया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डीआरआई की यह कार्रवाई देश के सोने की तस्करी रोकने और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। छात्र अपने नतीजे डीजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. The government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex ahead of the monsoon session of the Parliament beginning tomorrow. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of the House in Rajya Sabha Jagat Prakash Nadda, Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan were also present in the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues. He stressed that meaningful debate rather than disruptions is essential for strengthening democracy. Earlier, just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in state assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. President Draupadi Murmu embarked on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the 3 European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the 3 countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. President of Zanzibar and Chairman of the Revolution.

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी ईटानगर का और FM 103.1 MHz से है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं के बाद अब वक्त है कुछ सुकून के पल का। शाम की महफिल, जहां हर शाम सस्ती है दिलों की महफिल, बातों की महक और बेहतरीन गीतों का खूबसूरत सफर। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट साजिद, और अगले आधे घंटे तक हम साथ बिताएंगे यादों, मुस्कुराहटों और शानदार संगीत के साथ।

दोस्तों कहते हैं प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह बिना शोर किए दिल में अपनी जगह बना लेता है। फिर हर मौसम सुहाना लगने लगता है और हर रास्ता आसान, हर पल यादगार रहता है। कहते हैं मोहब्बत की राहों में मंजिल नहीं देखी जाती, जिसके साथ दिल लग जाए फिर दूरी नहीं देखी जाती। दोस्तों ऐसा ही एक एहसास समेटे हुए अगला गीत है। इसकी धुन सुकून देने वाली है और इसके बोल दिल को छू जाते हैं। अगर आप भी शाम किसी की यादों में खोए हैं या बस संगीत के साथ कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो यह गीत आपकी शाम को और भी खास बना देगा। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का खूबसूरत गीत काफिराना।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। यह होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहते हैं प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह हमें बदलता नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी खूबसूरती को सबके सामने ले आता है। कभी एक मुस्कान पूरे दिन की वजह बन जाती है तो कभी किसी की मौजूदगी हर पल को खास बना देती है। ऐसे ही मासूम एहसासों को एक प्यारी सी धुन और दिल की छू लेने वाली अंदाज में समेटता हमारा अगला गीत। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसकी याद आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो यह गीत आपके लिए। इस खूबसूरत शाम को प्यार और संगीत के नाम करते हैं। सुनते हैं यंगिस्तान का बेहद प्यारा गीत सुनो ना संगमरमर, सिर्फ यहीं आपके अपने शाम की महफिल में।

दोस्तों, जिंदगी का हर सफर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोगों हमारी कहानी का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं, तो कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते हैं। वे हर बार दिल को उसी तरह छू जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला गीत भी कुछ ऐसे ही जज्बातों को बेहद सादगी और गहराई के साथ महसूस कराता है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहाँती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 MHz से। दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आदि श्रोताओं का समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर तनाग धरम असेरूप कुमरक से दौला सीयुम का आदि प्रभुवम इरोपतुं कराप आदिलोतादम तत्पाय लुबिनसी जस्तीना गम्मेंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नेशन आउम मोल्दोवा नॉर्थ मेसेडोनिया दलो रोमेनिया कंट्री अनगो नाम अम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बु लुकान बिदोन प्रेसिडेंट के कंट्री आउम अनगो बोमसिन नाम सी इंडिया लोग बायलिटरल टाइज दलो नेशन तकाम अ लकोदोला अदे मोदोप अमला इरो बोसिदुंग लुकान बिदो हिलोक बोमोदी कोंग लोंगासो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे के ओदिलोंगम असेंगा नाम पर कुमलुक जोलुक बितो सोशल मीडिया पोस्ट लो पीएम मोदी बु मंगल पांडे के कंट्री लगा पर सेक्रिफाइस दोला आयना आगेर इगबोनम कदिंग अम कंट्री अदिलोको मुन्योक सिमाय दलो आपना जेनरेशन कोम कांगतादग हुयारिय अमला मुयुमागोमम आतकान बितो मलोक गिकाना दी कोंग दलो टू टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट पी बी सिंधु बु जापान ओपन 750 अमनम पाबोतो पी बी सिंधु बु थ्री टाइम वर्ल्ड चैंपियन अकेना यामागुची म 21-17 स्कोर लोग इकुमतो अमला आतकान बितुंग जापान ओपन टूर्नामेंट अम इंडिया लोग तकाम करा पर पी बी सिंधु बु पांगबोतुंग अमला लुकान बितुंग Central Board of Secondary Education CBSE class 10 log second board exam 2026 result lukan bilantung national education policy luga bom nam laga log CBSE class 10 poriko laga pa two time board examination system ko lukan lan bito main board exam 17 February log March लोपर इतो दलो सेकेंड बोर्ड एग्जाम 15 मे लोक 21 मे लोपर इरतो 2026 द तक लोक मेन दलो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट लुदुमसिला 96.78% पर इदुंगमला सीबीएसई लुकान बिदो बाहिलो यदोला

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के गायक पीयूष मिश्रा के बारे में। 13 जनवरी 1962 को ग्वालियर में कुमार शर्मा के नाम से जन्मे पीयूष मिश्रा बाद में प्रियकांत शर्मा हो गए। इसके बाद जब उनकी बुआ ने उन्हें गोद लिया तब वो पीयूष मिश्रा बन गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद पीयूष मिश्रा ने तमाम नाटकों में काम किया। इसके बाद जब वो मुंबई पहुंचे हैं तो उन्होंने फिल्म दिल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मकबूल, गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। पीयूष मिश्रा सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि गायक, संगीतकार और लेखक भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में संवाद लिखे, स्क्रीन प्ले लिखा और गाने तो आरंभ है प्रचंड जैसे शानदार और कई लिखे हैं। दोस्तों, 1990 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन करने के बाद पीयूष मिश्रा ने दिल्ली में थिएटर किया। कई नाटकों में अभिनय करने के बाद वो थिएटर के मशहूर निर्देशक, राइटर और एक्टर बन गए। इसके बाद वो मुंबई आए और उन्होंने राजधानी और भारत एक खोज जैसी टीवी सीरियल में काम किया। दोस्तों, फिल्मों में पीयूष मिश्रा की एंट्री 1998 में आई फिल्म मनी रत्नम द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की दिल से हुई। फिल्म में उनका छोटा सा ही किरदार था। बतौर अभिनेता पीयूष मिश्रा को पहचान मिली साल 2003 में आई फिल्म मकबूल से। इरफान खान, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और पंकज कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने भी पीयूष मिश्रा ने अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।

जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ना।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के अभिनेता गायक पीयूष मिश्रा के बारे में। दोस्तों पीयूष मिश्रा अभिनेता के अलावा

लेखक भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों के डायलॉग और स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं। इनमें द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे फिल्में भी शामिल हैं। पीयूष ने इसके संवाद लिखे हैं और उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान की गजनी, ऋतिक रोशन की अग्निपथ और रणबीर कपूर की शमशेरा के भी डायलॉग लिखे हैं। जबकि यहाँ 1971 और लाहौर जैसी फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा। दोस्तों आपको बता दें कि गुलाल, टशन और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों के भी इन्होंने गीत लिखे थे। यही नहीं, पीयूष मिश्रा के लिखे और उनके संगीत बने गाने भी काफी मशहूर हैं। उन्होंने टशन, आजा नचले, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, शमशेरा, दिल पे मत ले यार, लाहौर और चल चले जैसे फिल्मों के भी गीत लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुलाल, लाहौर और गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुछ गानों में संगीत भी दिया है। गुलाल में तो उन्होंने ही गाने लिखे हैं, संगीत दिया है और गाए भी हैं, जिसे आरंभ है प्रचंड जैसा कल्ट गाना भी शामिल है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं आज के कलाकार, जहाँ हम बात कर रहे हैं लेखक गायक और एक्टर पीयूष मिश्रा के बारे में। दोस्तों पीयूष मिश्रा किसी वक्त में शराब के काफी आदि थे। उनका मानना है कि अपने शुरुआती जीवन के कई साल उन्होंने शराब में ही बिता दिए।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के रोन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। अभी से कुछ देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
2: Telepon ke alur regula loko korna nantun urum ke kene baje rema tarmelum alamela surunga nishi agam ara mulanji grema tanaga de tacho be surunga shipu yang tapa chora jab jalan shi nerma akom harre pupabla presidente de nandra fodi murmu ye kibu moko om maldo wa nela not maso donia ok romania gedene kago go jette basilo golka indre pe charap gi kwa ok sok mok om ga ara lo yin asa nam te ham ale we jab de japa mi shi to ko presidente murmu ga kago go jinam se ril kuna ham la extern affairs ministry ha japa ji ku hal ne pato मुख लगा कई अल्प तुर्ण गाने मंगल फांदे गिद्ध आलोहम शिलो फ्लोमस्तर नरेंद्र मोदी ये मेगाप सगाप जिग्रे कला बग पोतो आगोल उपु ओगरम ताल जिग्रे कला कुम जो फुकन खल में पातो ओक मंगल फांदे ये अतिग त्रिमुख अनग लगा व सिल याल के जिप कुम खम फ्लोमस्तर नरेंद्र मोदी ये सोशल मीडिया पोस्ट मुल गग्रे कला चापा जिप कुम ओक बुग बस कानो तुक माब मुख लगा सिल याले के जिनाम हा भारत के नीचे नीचे मिल हा सिलो वो ब मेगा सा का ब जीवरी के खम अंदर मोते ये जपा ताप कु म ओक मंगल फांदे ग शीतम गु तुम कुनाम नाम त हम सिनी सोज ग मुख लो सिचा ग चा ज्ञान ग त ने आले ब सिलन गुलन ग त ब रिगे कुन प मे छा कु न खम प्रोमिस्टर ये जप ताप कु न ब हम तो West Kaming district ga bichum koro ga bip lela ing taram nidum om ham sir kumchi national disaster response force gud ha latu lagab jip kum khar men pato o ka nido ha dikta alba huluk jibe kunam lagab koro ha lomda dabe kai alba telinjinam lagab so ka nidum om ham isa tabela ing जिप कुम ओक सो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट और पुलिस हेडक्वार्टर लो अगम अहम निवाय तुर्ब जपाब पाकुनाम लगाब डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर है NDRF रेस्क्यू टीम गते ने सोक इस नि गते ने बेब ला इंग तनम अगम हम जपा कुनाम लगाब सो दोर्जी देसी सो नेला लाइगो किंजुजु ओक गोलो सिदासो बुर ने इसग कुंबु लोक सेतोर ला सेलेंजि कुम खबला मे पाथा तो ओक सोक्तायो लो सो पब्लिक नि गद ने सिजाग दिरनि तोगा आलो लो

0: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। मैं अनिल दत्त शर्मा आपका स्वागत करता हूं महिलाओं के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। श्रोताओं, तन मन को स्वस्थ रखने के यूं तो हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन योग का रास्ता अपने आप में एक अनूठा रास्ता है। आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में योग का योगदान और भी बढ़ जाता है। वैसे तो योग हर उम्र में करना चाहिए। हर महिला और पुरुष को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर योगा जरूर करना चाहिए। इससे आपका तन और मन स्वस्थ रहता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम योगा और इसका महिलाओं के जीवन में महत्व क्या है, उस विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सत्य प्रकाश पटेल जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर में, डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज में। पटेल जी, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में।
2: जी धन्यवाद अनिल जी,
1: आपसे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ योगा के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए योगा का क्या महत्व है। तो मेरा सबसे पहले जो ब्रॉड सवाल आपसे ये है कि योगा एक्चुअल में है क्या?
2: योगा ये कि जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में योग को अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। जिसमें हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हैं। जो कि यम है वो हमारा सोशल डिसिप्लिन है, नियम है

0: वो सेल्फ डिसिप्लिन है, आसना है, वो हमारे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड है. धारणा, ध्यान, समाधि ये हमारे अंतरंग योगा के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एंड उसके बाद के प्रोसेस हैं. तो जो मेन प्रोसेस है वो हमारा आसना, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन
1: है. योगा का एक विस्तृत रूप है, लेकिन जो आपने बताया वो हम फॉलो करते
0: हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में
1: है. वैसे योगा का एक काफी लंबा चौड़ा इतिहास है और काफी एक लंबा चौड़ा उसका होराइजन है. अच्छा, महिलाओं के लिए योग क्यों जरूरी है?
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. महिलाओं और पुरुषों के जो शारीरिक संरचना में अंतर होने के साथ साथ उनकी क्रियात्मक भिन्नताएं भी भिन्न भिन्न है, जिस कारण उनके लिए उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल अलग अलग तरह के पोस्चर्स जरूरी हैं. जैसे कि हमारा महिलाओं में देखा गया है कि माहवारी का या प्रेग्नेंसी जैसे,
1: हम बाद में आएंगे, अभी आप सिर्फ ये बताइए कि योगा महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है.
0: हाँ, महिलाओं के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारे शरीर में तीन तरह की मांसपेशियां होती हैं, एक कार्डियक मांसपेशी, दूसरी इनवॉलेंट्री मांसपेशी और तीसरी वॉलेंट्री मांसपेशी, जो कि महिलाओं में बेसिकली जो इनवॉलेंट्री मांसपेशियां होती हैं उनकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अदर मेल्स में भी ऐसा है कि इम्पोर्टेंस तो उनके लिए भी सेम है, बट महिलाओं में इसलिए भी जरूरी होता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंक्रीज करता है या स्ट्रांग होने की जरूरत होती है, ताकि वो अपने आने वाले समय में अच्छे से बच्चों को जन्म दे सके, बर्थ दे सके और लाइफ टाइम तक स्वस्थ रह सके.
1: आसन की बात करते हैं, क्या महिलाओं के लिए कोई अलग से आसन है पुरुषों को, पुरुषों पुरुष जो आसन करते हैं या वैसे ही है, या फिर इसमें कोई डिफरेंशिएशन है कि महिलाओं के लिए खास तरह के जो आसन है योगा में, कुछ ऐसा है?
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सेम आसन है.
1: इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है,
0: इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और ड्यूरिंग फीमेल किस एज ग्रुप में है,
1: एज ग्रुप
0: या उनका मतलब मेंटल स्टेटस उस समय कैसा है या फिजियोलॉजिकल स्टेटस उस समय कैसा है, उसके अकॉर्डिंग. अगर वो बहुत ओबीज हैं या मैंने जैसे बताया कि प्रेगनेंसी के पीरियड में या अदर पीरियड में, तो उस टाइम के हिसाब से डिफरेंट पोस्चर्स.
1: अभी आपने बताया कि महावारी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या योगा महिलाओं को करना चाहिए या कि उसके लिए कोई अलग से कोई आसन है?
0: जी बिल्कुल, उसको करना चाहिए, क्योंकि होता है सिर्फ हम अवॉइड करते हैं तो जो जंपिंग एक्सरसाइज होते हैं वो महिलाओं को उस ड्यूरेशन में,
1: सिटिंग वाली जो है वो
0: जी
1: कर सकते हैं.
0: सिटिंग वाली है, सिटिंग में जैसे हमारा अर्धमत्स्येन्द्र आसन हो गया और उसके बाद तितली आसन हो गया या सुप्त तितली आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, ये सब महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी और बेनिफिशियल है.
1: मतलब महावारी के दौरान भी महिलाएं जो है वो योगासन कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं होगी.
0: जी बिल्कुल.
1: अब हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज ही नहीं करनी चाहिए. तो क्या योगा करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? पीरियड पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग स्टेज है उस समय क्या योगा करना चाहिए, बीच की है, फिर एंड की स्टेज है वो डिलीवरी देने वाली होती है, तो क्या इस तीनों स्टेजेस में योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
0: जी बिल्कुल करना चाहिए. जो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान है तो वो डिफरेंट स्टेज होता है, जैसे कि फर्स्ट 3 महीने के दौरान दूसरे पोस्चर्स होंगे, आफ्टर थ्री मंथ्स बाद दूसरे होंगे, फिर लास्ट जो मंथ्स होंगे उसके लिए दूसरे पोस्चर्स होंगे. इनिशियल फेज में
1: इंटेंसिटी क्या वेरी करेगी, कि इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन
0: पोस्चर डिफरेंट होंगे, क्योंकि इनिशियल फेज में आप है कि थोड़ा सा बेंडिंग फॉरवर्ड विद इन 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में आप थोड़ा बहुत डिफिकल्ट या इंटेंसिटी वाले आसनास कर सकते हैं, बट हमें ये तो मालूम होता है कि हमें कौन से आसन करने हैं, ये ज्यादा जरूरी है कि उस दौरान कौन से नहीं करने हैं.
1: हाँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
0: ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
1: कौन सा आसन करने हैं उस समय,
0: कि कौन सा आसन आपको नहीं करने हैं. तो जैसे जब आपको पेट के बल नहीं लेटना है, ये किसी भी पोस्चर्स में आपको पेट के बल
1: हानिकारक हो सकता है,
0: पेट के बल नहीं लेटना है, या आपको बहुत ज्यादा अपने स्टमक पे लोड नहीं देना है. उसके बाद ये होता, और जो आप कर सकते हैं वो बटरफ्लाई पोस्चर्स हैं, तितली आसन, जिससे कि आपका पेल्विक रीजन जो है वो स्ट्रांग होगा, जानुशीरासन है उसके दौरान आपका लोअर बैक है जो वो स्ट्रांग होगा, ब्रिज पोज है आपका स्पाइनल जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा. इसके अलावा आप कुछ आसनाज हैं, स्टैंडिंग ट्रायंगल पोज हैं या ट्विस्टिंग साइड पोज हैं जो कि आपके ब्रीदिंग को इम्प्रूव करेंगे, ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे.
1: चलिए, आपने मतलब काफी अच्छी चीज बताई कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान ये देना है कि कौन सी आप एक्सरसाइज ना करें योगा प्रेगनेंसी के दौरान. पटेल जी, एक सवाल

0: ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला गर्भवती होती है तो काफी महिलाओं को उस समय बैक पेन की शिकायत रहती है,
1: जी
0: तो क्या योगा में कोई ऐसे आसन है कि उस पेन को रिड्यूस किया जा सके या उस पेन को कम किया जा सके?
1: जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर देखा जाता है कि जो हमारी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमारा पेट जो है, महिलाओं का पेट, वो आगे साइड इंक्रीज करता है। इस वजह से उनके लोअर बैक पे ज्यादा इम्पैक्ट,
0: इम्पैक्ट पड़ता
1: ज्यादा
0: है।
1: स्ट्रेस आता है। तो हमें उसको रिलीज करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ आसनास हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, ट्री पोज हो गया, या कोबरा पोज हो गया, या शशांक आसन हो गए। तो ये सारे पोस्चर्स हम उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं,
0: कर
1: जो
0: सकते हैं,
1: कि इजी हैं, इजी से कर सकते हैं, और उनका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट
0: वो
1: नहीं
0: बच्चों के
1: है।
0: इफेक्ट भी नहीं
1: जी,
0: होगा।
1: कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो इस वजह से और भी कुछ पोस्चर्स हैं कि आप अच्छे से, त्रिकोण आसन हो गया, तो आप इससे आपका ब्रीदिंग जो है वो भी इम्प्रूव कर गया, और बैक में भी, जो हमारे बैक में 6 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, देन लेटरल बेंडिंग लेफ्ट एंड
0: लेटरल
1: लेटरल
0: बेंडिंग
1: बेंडिंग
0: राइट।
1: राइट, एंड ट्विस्टिंग, लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग। इस तरीके के 6 टाइप के मोशंस हमारे बैक या स्पाइंस में होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत इजी भी होता है महिलाओं के लिए, अगर वो ये छवो मूवमेंट, जो 6 मूवमेंट्स हैं, उसको कंटिन्यू नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, ज्यादा नहीं, इतना भी अगर उसका टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो उनको बैक पेन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं
0: नहीं
1: आएगा।
0: होगा, नहीं
1: जी
0: आएगा। चलिए, अच्छा एक और समस्या जो
1: जी
0: महिलाओं में, लड़कियों में देखने को मिलती है,
1: जी
0: जब लड़की प्यूबर्टी की एज क्रॉस करती है या उस
1: जी
0: एज में जब दाखिल होती है, उसको जब महावारी शुरू होती
1: जी
0: है, तो देखने में आया कि कंधे झुक जाते हैं और बॉडी पोस्चर काफी चेंज होता है, मतलब फिजिकली काफी चेंज होती है लड़कियां,
1: जी
0: उसको मेंटेन करने के लिए उस कोई योगासन है
1: जी हाँ
0: उसमें लड़कियों के लिए?
1: जी जी बिल्कुल। ये देखा जाता है कि प्यूबर्टी एज जब वो क्रॉस करते हैं, टीनेज में उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं बहुत सारे। उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा उनका शोल्डर जो है वो टिल्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन
0: फॉरवर्ड
1: में,
0: कर रहे हैं।
1: उसके लिए वो कोबरा पोज जैसे होता है कि स्नेक पोज भी हम बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिज पोस्चर है, जो कि उनके स्पाइन को स्ट्रेंथ करता है और शोल्डर को भी स्ट्रेंथ करता है। उष्ट्रासन है, जिसे कैमल पोज भी बोलते हैं, जो कि हमारे हंच बैक के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा हम व्हील पोज या धनुरासन है, इसको परफॉर्म करके थोरॉक्सिक रीजन, जो कि शोल्डर बैक से रिलेटेड है, उसके लिए बेनिफिट होगा।
0: यानी योग में सबके लिए कुछ ना
1: जी जी
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: जरूर है, ऐसा कोई
1: एकदम
0: वर्ग नहीं है जो इससे छूता हो।
1: जी
0: अच्छा सत्यप्रकाश जी, जब डिलीवरी हो जाती है महिलाओं
1: जी
0: की, उसके बाद कितने वक्त बाद योगा करना चाहिए?
1: हाँ, महिलाओं की जब डिलीवरी हो जाती है, तो उनको कम से कम 1 महीने कंप्लीट रेस्ट, 1 महीने तक
0: कोई
1: कोई
0: योगा
1: भी,
0: नहीं।
1: हाँ, कोई भी आसन या प्राणायाम ये नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह अगर है तो वो स्ट्रेचिंग कर लें, जैसे कि हमारा ताड़ासन हो गया, या आप
0: मैं धीरे
1: प्राणायाम,
0: धीरे शुरू करना
1: जी
0: चाहिए
1: जी आप प्राणायाम कर लीजिए उस ड्यूरेशन में, बट उसमें आप हार्ड, कोई भी हार्ड आसन जो
0: हार्ड
1: है
0: आसन ना
1: वो
0: करें।
1: ना करें। सिंपल सा आप सुखासन कर सकते हैं, और इसी तरीके
0: क्योंकि
1: से
0: उस समय
1: जी
0: महिलाओं में वेट काफी बढ़ जाता है,
1: वेट
0: तो
1: काफी
0: उस
1: इंक्रीज,
0: वेट को ना बढ़े वो वेट ना बढ़े उसको रिड्यूस करने के लिए कोई एक्सरसाइज है या उसको स्टॉप करने के लिए कोई एक्सरसाइज है?
1: जी हाँ, आसनास तो बहुत सारे हैं, उसके बाद वो कर सकते हैं 15 to 1 month के बाद, लेकिन उस ड्यूरेशन में, क्योंकि उनका बॉडी जो फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा हुए होते हैं,
0: हार्मोन्स भी चेंज होते
1: जी
0: हैं उसके बाद,
1: हार्मोन्स भी
0: पूरे
1: चेंज
0: हार्मोन्स
1: होते
0: चेंज हो
1: हैं,
0: जाते हैं।
1: तो उस ड्यूरेशन में वो चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें उसके लिए, मैंने जैसे पहले ही आपसे बोला था कि रिलैक्सेशन की जरूरत है, कि अगर आप एक्सरसाइज में आपके मसल्स कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं, तो उसको आप रिलैक्स करने के लिए टाइम देते हैं। तो इस वजह से उनको जरूरत है कि 15 से 20 दिन के बाद से कोई भी योगासन है वो स्टार्ट
0: चाहे
1: करें।
0: डिलीवरी
1: जी
0: सिजेरियन से हुई हो या नॉर्मल डिलीवरी
1: जी
0: हुई हो,
1: जी
0: कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी
0: उससे। अच्छा, अब हम खान पान की बात करते हैं, क्या प्रेग्नेंट महिला को या फिर आम जो महिलाएं हैं
1: जी
0: योगा कर जब वो योगासन को अपनाती हैं, तो खान पान क्या जो चला आ रहा है वो है कि कुछ स्पेशल चीजें योगा के दौरान खानी चाहिए?
1: नहीं, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान हैं या योग कर रहे हैं, उस दौरान थोड़ा सा सादा खाना खाने की जरूरत होती है, बहुत
0: हैवी
1: ज्यादा,
0: हैवी नहीं
1: हाँ,
0: खाइए,
1: बहुत ज्यादा हैवी फूड
0: नॉन
1: मत,
0: वेज अवॉइड
1: जी
0: करिए।
1: नॉन वेज अवॉइड करिए, बाकी आप प्रोटीन रिच डाइट या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाइए, और उसके बाद थोड़ा सा फल या फ्रूट्स वगैरह लेने से उसे
0: लिक्विड
1: आपका,
0: डाइट पे थोड़ा
1: जी
0: ध्यान।

0: वजह से आपको मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं।
1: अच्छा, आसन की अगर हम बात करते हैं जी, तो कोई आसन अलग से है कि स्पेशलाइज सिर्फ लेडीज के लिए है, या फिर एज ग्रुप का भी, अगर ये बच्चों के लिए है, छोटी लड़कियों के लिए है, या उम्रदराज महिलाओं के लिए है, तो आसन है कि पर्टिकुलर आसन एक जनरल आसन है सबके लिए?
0: कुछ पोस्चर्स हैं
1: अलग अलग,
0: कुछ डिफरेंट पोस्चर्स हैं कि जो ये स्पेशली महिलाओं के लिए हैं, कुछ जैसे कि पद्म मयूरी आसन है
1: स्पेशल महिलाओं के लिए।
0: हाँ, उसको स्पेशली
1: क्या फायदा है महिलाओं के लिए, पुरुष क्यों नहीं कर सकते हैं उसको?
0: नहीं, पुरुष करने को तो पुरुष तो कंप्लीट सब कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हमारी जो महिलाएं हैं उनका शोल्डर उतना स्ट्रेंथन नहीं होता है पुरुषों के अपेक्षा, उनमें जो कोर मसल्स होती है उतनी स्ट्रांग नहीं होती जो पुरुषों के उसमें होता है, और उनका जो बॉडी पोस्चर्स है वो मेल और फीमेल में बिल्कुल डिफरेंट है, इस वजह से हम उनको प्रिफर करते हैं कि जैसे पद्म मयूरी आसन।
1: बुजुर्ग महिलाओं में योगा

0: करेंगे, और मैं ज्यादातर प्रिफर करूंगा कि ये प्राणायाम करें।
1: ओके,
0: प्राणायाम करने से भी हमें सेम बेनिफिट होता है। जैसे एज जब आपका बढ़ता है तो आपके बॉडी को टेम्परेचर देने के लिए या ब्लड प्रेशर वगैरह के प्रॉब्लम के लिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उसके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, उससे आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, तो ये आपके ब्लड प्रेशर में भी बेनिफिशियल होगा।
1: अच्छा, महिलाओं में काफी रोग भी देखने को मिलते हैं जो स्पेशलाइज्ड महिलाओं के लिए में ही होते हैं, तो योगा किस तरह से सहायक है उन रोगों से लड़ने के लिए महिलाओं में?
0: जी, जैसे कि आप देखेंगे कि ओबिसिटी है, ओबिसिटी है ये महिलाओं में जल्दी आती है, क्योंकि इनका जो नेचर है बॉडी का,
1: गठिया भाई की समस्या है, ये महिलाओं में ज्यादा देखने को आती है,
0: गठिया अर्थराइटिस भी हम जिसे कहते हैं। तो ओबीज होने से आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डायबिटीज का प्रॉब्लम होने लगता है, तो इस वजह से महिलाओं को जनरली योगा पोस्चर्स जो भी है वो योगा पोस्चर्स करते रहने चाहिए, ताकि उससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर भी जो फैट कलेक्ट हो रहा है वो ना कलेक्ट हो, तो इस तरीके से। और जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, गठिया का प्रॉब्लम आपने बताया, तो गठिया भी
1: महिलाओं में बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है।
0: जी, तो जो ये गठिया है ये भी ज्यादातर तो फोकस करता है ओवरवेट से। ये गठिया भी हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा ऑस्टियोथोरोसिस और दूसरा होता है जो हमारा वो रिमोटॉइड। जी, तो ये दो प्रकार के गठिया होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला जो गठिया है ऑस्टियोथोरेसिस जो है, इसमें हमारे लिगामेंट्स या टिश्यूज जो हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे जॉइंट्स के, वो वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और जो दूसरा गठिया है, इसके रीजंस अभी बहुत ज्यादा नोन नहीं है, बट ये उम्र के साथ इसमें भी आने लगता है। और मैक्सिमम जो गठिया का प्रॉब्लम होता है वो 65 प्लस के ऊपर होता है,
1: लेकिन आजकल ऐसे केसेस हैं कि 40s में भी देख रहा हूं मैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जानकार है उनको 45 में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही है, गठिया हो जा रहा है।
0: जी, हो रहा है, तो ये
1: खान पान
0: का असर है। जी बिल्कुल।
1: और कोई महिलाओं के लिए संदेश आप देना चाहेंगे योगा के संदर्भ में?
0: जी बिल्कुल, देना चाहूंगा मैं कि जो भी अगर हो सकता है तो वो फास्ट फूड से बचें, क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर फास्ट फूड पसंद आते हैं, उससे बचें, क्योंकि उसमें ट्रांसफैट होता है, वो दिखता बेशक नहीं है बट वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और दूसरी चीज ये है कि कंटिन्यू योग करते रहे। एक बोलना चाहूंगा मैं कि एक्सरसाइज, डाइट एंड रिलैक्सेशन, आफ्टर दैट रिपीटेशन, आप इसको अगर करते रहेंगे तो होल लाइफ ऑफ हेल्थ।
1: कभी कभी मैंने ऐसा भी सुना है कि महिलाओं को कि योग कर रहे हैं एक महीने से लेकिन इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्या टाइम इफेक्ट में होने में टाइम लगता है या फिर एक्सरसाइज करने के स्टाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है?
0: दोनों चीज आपने जो बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो इफेक्ट है, कुछ लोग है कि तुरंत उन्होंने एक्सरसाइज किया और तुरंत इफेक्ट देखना शुरू करते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा फिजिकल एडॉप्टेशन है वो नियर अबाउट 5 to 10 days लेता है, साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो 21 to 25 days लेता है, एंड फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो 45 to 60 days लेता है।
1: तो अगर 45 से 60 दिन आपको असर दिखना शुरू हो,
0: अगर आपको असर दिखना है तो आप 45 days
1: दो महीने का जी रेगुलर करें, जी बीच में ब्रेक ना
0: दें। हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि नहीं इसका इफेक्ट नहीं शो करता है, तो आपको जरूर शो करेगा। और दूसरा चीज है कि आपने एक बहुत पुराना सुना होगा कि करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
1: हाँ, करेक्ट डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं।
0: जी बिल्कुल, तो अगर आप करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप परफेक्ट होंगे, रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो परफेक्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से आप आज जो पोस्चर से या पोजिशन मैंने बताया कि अभी आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और आप उसमें सूर्यभेदी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निगेटिव इम्पैक्ट आएंगे,
1: यानी कि नॉलेज का होना बहुत जरूरी है।
0: तो आप इसको आप प्रॉपर गाइडेंस में करें,
1: नॉलेज
0: प्रॉपर टीचर के देखरेख में करें।
1: सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों, आज आपने जाना महिलाओं के जीवन में योग के महत्व के बारे में, उसके गुणों के बारे में। अगले अंक में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz से। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपना हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत, अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी गैर अतः।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस केम्बकम के और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मेबी न्योदू तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

बान्यम पोंगलाहम और पेबो पोंगलाहम की आवाज में आप सुन रहे थे वांचो गीत। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण FM 103.1 MHz पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशी गीत बेंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलेडीज, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कहते हैं कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ धुनें दिल में हमेशा ताजा रहती हैं। जैसे ही उनके पहले सुर कानों में पड़ते हैं, यादों का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी बचपन की गलियां याद आती हैं, तो कभी परिवार के साथ बिताई शामें, तो कभी किसी अपनों की मुस्कान याद आती है। इसी एहसास को फिर से जीने का वक्त है। शाम की महफिल में यह सेगमेंट भूले बिसरे गीत, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे सदाबहार नगमे, जिनकी मिठास आज भी वैसे ही जैसे बरसों पहले थी। आइए दोस्तों सुनते हैं भूले बिसरे गीत सेगमेंट का पहला गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज की महफिल में हम बात करेंगे उस दौर के जिसमें मोहब्बत की मासूमियत भी होती थी और इंतजार की गहराई भी। साल 1963 की यादगार फिल्म मेरे महबूब का ये खूबसूरत गीत उस दौर की शायरी, संगीत और आवाज का बेहतरीन संगम है, जब मोहम्मद रफी साहब की आवाज दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती थी। लगता था जैसे कोई पुरानी प्रेम कहानी फिर से जिंदा हो गई। इस गीत में एक आशिक अपने महबूब की खूबसूरती और मोहब्बत को पुकारता है, एक ऐसी पुकार जिसमें उम्मीद है, जुनून है और प्यार की अनकही दास्तां। आइए यादों के उसी सुनहरे दौर में चलते हैं। पेश है मेरे महबूब का एक बेहद खूबसूरत नगमा, ऐ हुस्न जरा जाग।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूँ आपका दोस्त RJ साजिद। दोस्तों, आज का गीत है मोहब्बत की उस खूबसूरत एहसास का, जहाँ इंतजार भी है, चाहत भी है और दिल की गहराइयों से निकली एक पुकार भी है। साल 1963 के फिल्म मेरे महबूब का ये अमर गीत हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की याद दिलाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की दिल को छू लेने वाली आवाज़, नौशाद साहब का यादगार।

संगीत और शकील बदायूनी साहब की खूबसूरत शायरी ने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। कहते हैं कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यह वही नगमा है जो पुराने खतों, पहली मोहब्बत और उन अनकहे जज्बातों की याद दिलाता है जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं होता। आइए प्यार और यादों से भरे इस शाम में खो जाते हैं। पेश है फिल्म मेरे महबूब का सदाबहार नगमा, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते हैं बल्कि दिल के किसी कोने में छुपी यादों की तरह जगा देते हैं। आज का नगमा भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें इंतजार है, तन्हाई है और किसी खास की याद में धड़कते दिल की कहानी है। साल 1963, फिल्म मेरे महबूब, खूबसूरत गीत हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की याद दिलाता है जब संगीत में एहसासों की गहराई हुआ करती थी। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज, नौशाद साहब का मधुर संगीत और शकील बदायूनी साहब की दिल छू लेने वाली शायरी इस गीत को अमर बना देती है। दोस्तों, यह नगमा उस एहसास को बयां करता है जब किसी अपने की याद रातों की नींद चुरा लेती है और दिल बस उसी के लौट आने की उम्मीद करता है। पेश है याद में तेरी जाग जाग के हम, फिल्म मेरे महबूब से।

दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, ये हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त साजिद इकबाल को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: जमाने भर की मस्ती को निगाहें समेटा है।
1: सैयद जफर इस्लाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य, सुखदेव भगत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
3: देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखते हैं बार बार और चाहते हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन आप वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ

0: है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है
1: जी
0: कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो वो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एप्सॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या है लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, MP MLA को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और SIR का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बना कर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, MSP के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता,
0: और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
0: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया, तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नाकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नाकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है,

0: देशहित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते हैं तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दिया, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं और एसआईटी आपने गठन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब एमपी चोरी करती है, एमएलए चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुधाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया, ये शर्तें जोड़ने की कहाँ जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है।
1: जी अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
4: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33%

0: रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए। हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई के दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए के सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उससे मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर

0: रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग, जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, ईट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही, उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे, और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
3: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पोलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है, और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपनी विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा

0: सार्थक सहयोग और संसदीय परंपरा के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय शौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुर्गन बैठक में उपस्थित रहे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देवार्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर से अधिक लंबा रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत प्राप्त हुई थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कई स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारतीय टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 28वें ओवर में एक विकेट खोकर 168 रन बना लिए थे। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting

0: was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
1: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
0: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during this session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometer-long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The minister said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys. The Delhi High Court today refused to intervene in the activist Sonam Wangchuk's treatment at Safdarjung Hospital, saying the government's decision to move him from Jantar Mantar to the hospital could not be termed arbitrary. Justice Mini Pushkarna said no immediate order was needed to shift Wangchuk to a private facility, while noting that doctors were monitoring his condition and had provided treatment with his consent. The court was hearing a plea by Wangchuk's wife Gitanjali Angmo seeking its transfer to a private hospital. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning tomorrow. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanghita is enforced in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. Madhya Pradesh Cabinet today approved the draft bill on Uniform Civil Code. The Cabinet meeting was held at Jagdishpur in Bhopal, led by Chief Minister Dr. Mohan Yadav. The bill will be presented in the monsoon session of the State Assembly starting tomorrow. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off at 12:30 a.m. Indian time. Meanwhile, several Indian states including Kerala, Manipur, Mizoram and Meghalaya have declared holiday in schools and higher educational institutions for tomorrow after demand by students and political leaders. They cited the late night schedule of the finals and concerns over attendance and travel after the game. And in men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, Shubman Gill led Indian side with 187 for 1 in 29 overs when reports last came in. Opting to bat, England scored 387 runs at the loss of 3 wickets in 50 overs. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना। जॉर्डन में अमेरिका के सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हवाई हमले किए। पेरू के इंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से 5 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा घायल। और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
4: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
3: We should help us strengthen the parliamentary relationship.
2: अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया।
5: अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उन्होंने ईरान की तटीय निगरानी सेना और वायु रक्षा केंद्रों, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इस कार्रवाई में खास तौर पर गार्ड को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने ईरान के आहवाज में अमेरिका की MQ-9 ड्रोन को मार गिरा है। सेंट्रल खातम अल अंबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना अमेरिका की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देगी। ईरान पर अमेरिकी हमले 8वें दिन भी जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मुलाकात भारत तंजानिया की अटूट साझेदारी और जानजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को दर्शाती है। श्री राधा कृष्णन ने बेहतर सहयोग के माध्यम से साझा विकास को आगे बढ़ाने में तंजानिया और जानजीबार के साथ साझेदारी करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। डॉक्टर हुसैन अली ने चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास परिसर का दौरा कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने आईआईटी मद्रास जानजीबार परिसर की स्थापना, जल परियोजनाओं, आईसीसीआर छात्रवृत्ति और आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के समर्थन की सराहना की।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज सुबह जांसीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत के 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: पेरू में एंडीज क्षेत्र में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि अब तक लगभग 300 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र हुआनकायो प्रांत के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। पेरू के राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान ने कहा है कि लापता लोगों की संख्या के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट सहित कई इमारतें ढह गईं या उन्हें क्षति पहुंची। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,119 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 346 मिलियन अमरीकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता की घोषणा की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा कि यह धनराशि आपदा से प्रभावित परिवारों को आवास, बुनियादी ढांचे और मूलभूत सेवाओं में सहायता प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच पर फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यू जर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 31 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। पूर्व विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना। जॉर्डन में अमेरिका के सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हवाई हमले किए। पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से 5 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा घायल। और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu embarks on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolution.